सतगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितौ सतगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

न पावे। हुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, हुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। हुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नाल कहे। जिन गुरु ना देखे नौ कियो, ते अक्यत संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समरथ कल युग। सुनत समाध शब्द जिस केरे, पुन दुखन नास सुखदायक सूर। जो तरत ध्यान बसत ते नेरे, पूरो पुरख दे घर सिमरत। मुख देखत अग जाए परेरे, जौहर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। होती जो प्यास पियूस पिवन की, वंचित सिद्ध को बिद मलायो। पूर्ण पोमन ठौर बसो, रस बासन स्यो जो दहंग दिस थायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी साम, जलन तीर बपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, तो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हथ तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जे देख चिरन अगन हरयो, निज बासर एक समान ध्यान। तो नाम सुने सुद पान डरयो, पन दास स्वास जगतर गुरु की। पारस पेट परस करयो, आराम दास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हथ धरयो।

राम चुरे दल मेलव अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जुज अपार सीता लह गया देसरो लक्ष्मण मुगो सराप नानक करता करनहार कर वेखे थाप थाप मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग उला दैत न समझई इन पव की ये काम नानक वे

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मन मुख चंचल मत है अंतर

सतगुरु जम काल ना छोड़ई, दूजे पाए खवाई, जो मन जानदा नजर न आवई, जर पहुंचे मर जाई। पुत कलत मोहित है, अंत बेली को ना सखाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए, नाव से मन आई। नांग से वड्डे वड पागी, जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी, बिन नावे दुख रोए। आत्मा राम ना पूजनी, दूजे क्यों सुख होए। होमे अंतर मैल है, शब्द न काढे धोए। नानक बिन नावे मैलिया मोए, जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंधले, जिसमें अग्नि का वास। बाणी सुरत ना बुझनी, शब्द ना करे प्रगास। ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं, गुर भजन ना करे विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिवसदा विगास। हर ज्ञानिया की रखदा, हों सब बलगारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानकता का दास। माया पुयंगम सर्प है, या केरिया बिखमाए। बेका मारण हर नाम है, गुर गारड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखया, तिन सतगुर मिलया आए। मिल सतगुर निर्मल होया, बेखो में गया बिलाए। गुरमुखा के मुख उजले, हर दरगे शोभा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तेन, जो चाले सतगुर पाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, निध हिरदे घर लिव लाए। निर्वैरे नाल वैर रचाएं, अपने कर लू की लाए। अंतर क्रोध अंकार है, अन दिन जले सदा दुख पाए। कूड़ बोल बोल निध पौक दे, बिख खादे दूजे पाए। बिख माया कारण परम दे, फिर घर घर पत कवाए। बेसवा केरे पूत क्यों, पिता नाम तुसी जाए। हर घर नाम ना चेतनी, करते आप खुवाए। हर गुरम कृपा तारियन, जन विछड़े आप मिलाए। जन नानक तस बलिहारणे, जो सतगुर लागे पाए। नाम लगे से उबरे, बिन नावे जम पुर जाए। नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछतावे। चिंता ताप तरे गए, तामन पया आनंद। गुर प्रसादी बुझिए, सातन सुती नचिंद। जिनको पूर्व लिखया, तिना पेटिया गुर गोविंद। नानक सहजे मिल रहे, हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना, गुर सबदी विचार। सतगुर का पाणा मन लैन, हर नाम रखे उरतार। ऐथे उथे मनियन, हर नाम लगे व्यापार। गुरमुख शब्द संजाप दे, तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच, अंतर प्रेम प्यार। जम काल नेड़ ना आवई, आ बख्शे करतार। नानक नाम रते, चेतनवंत हैन। निरतन होर संसार, जन की टेक हर नाम हर। बिन नावे ठवर न ठाओ, गुरमति नाओ मन मसे। सहजे सह सुमाओ, वडभागी नाम त्याया। ऐस लागा पाओ, जन नानक मंगे तूड़ तेन। तो सद कुरबाने जाओ, लग चौरासी मेदनी। किसना जलती करे पुकार, यो मोह माया सब पसरिया। नाल चले न अंती वार, बिन घर सांत न आवई। किस आगे करी पुकार, वडभागी सतगुर पाया। बुझिया ब्रह्म विचार, तिसना अगन सब बुझ गई। जन नानक हर उर तार, असी खते बहुत कमान दे। अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लै हो। हों पापी वड गुनेगार, हर जियो लेखे वार न आवई। तू बख्श मिलावनहार, गुर तुठे गरपा मिलया। सब किलव कट विकार, जिन्ना हर घर नाम त्याया। जन नानक तिन जयकार, विछड़ विछड़ जो मिले। सतगुर के पय पाए, जन्म मरण हिचल पय। गुरमुख नाम त्याए, गुर साधु संगत मिले। हीरे रत्न लभन, नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन। मनमुख नाम न चेत्यो, तिग जीवन तिग वास। जेदा दिता खाना पहनना, तो माना वस्यो गुणतास। त्यो मन शब्द न भेद्यो, त्यो होवे करवास। मनमुखिया दोहा गणी, आमन जान मुई आस।
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਭ ਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿਜੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ।

हर मंदिर वस्त अनेक है, नाम निध नाम समाल, तन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्दा हर पाल। वडभागी गढ़ मंदिर खोजया, हर गिरदे पाया नाल, मनमुख दहे दिस फिर रहे, आत तिसना लोभ विकार, माया मोह ना चुकई, मर जम्मे वारो वार, सदगुर सेव सुख पाया, आत तिसना ताज विकार, जन्म मरण का दुख गया,

ओंकार सदगुर प्रसाद अराग माला अराग एक संग पंच बरंगन संग अलापे अठो नंदन प्रथम राग।

पौरानद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा।

उजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मेल

मन कोई पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दर गै मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुरेक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत जे को बुझे हुए सचियार तबले उपर केता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तलै।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू द्यापे भाव है सोई वरतै जी, तू आपे करे सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखिया, करते का होए बिचारो, तित कर गावहो सोहेला सिवरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहेला, हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया नो, देखेगा देवन हार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावहु तेल। देहो सजन आसीसड़िया, जो होवे साहिब स्यों मेल। कर करे हो पहुंचा, सदले नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से दे आवन। राग आसा

अगै गया जानी है मिणा मैं बेकार, पै तेरा डर अगला खप खप छिजै देह। नाव जिन्ना सुल्तान खान होंदे डिठे खेह, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। श्री राग महला पहला सब रस मिठे मने है, सुनिया सा लोने खड़ तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए। शक्ति अमृत भाओ एक जा को नदर करे, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ रत्ता पहनन मन रत्ता, सुपेदी सतदान नीली स्याही कदा करनी, पहरन पैर ध्यान कमर बंद संतोख का, तन जोबन तेरा नाम। बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ घोड़े पाखर सोयने साखत, बूजन तेरी वाट तर्क स्तीर कमान सांग, तेग बंद गुण धात, वाजा नेजा पत्स्यों प्रगट।

मिलकै करै कहानियां सम्राथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर एक शब्द बिचारी है। जा तू ता क्या होर रहाओ, जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी। सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिलै जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करै दिन रात। केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात, सच मिलै सच उपजै सच मैं सच समाए। सुरत होवै पत उगवै गुरबचनी पौ खाए। नानक सच्चा पातशाहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमै मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिलै पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी गुरमुख शब्द समाए रहाओ। केता आखण आखी आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए। जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए, संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए। ज्योतिष पाना सो थी अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सबदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिलै फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिलै संतोखिया हर जपे कह पाए। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण रहाओ। ऊंचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुट सी सहज मिलया सुख होए। निज कर महल पछाणीए नजर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतर है बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवरते अग्यास, नानक देख दिखाई है हो सतबलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख न थी है पिर बिन दुख न जाए। मुंदे पिर बिन क्या सिंगार, दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर रहाओ। आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतेओ सो अवगुण आवै जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटेओ सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउं कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुरमिल पौजल लंगी है दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यों दुख कणो नित रोए, खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पाता है खोट ना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाह, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यों टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जां जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके पया पुराना चोला, रहाओ सज्जन मेरे रंगले।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द मिलावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझै नाही, अनदन दुख विहाणी, मनमुखे अंद न चेतही, डूमोए बिन पाणी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै तां हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच हमै दुष्टि पाई, आवण जाना जमण मरना मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंतना आवई, नितनित होए खुवार, पिरका महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ गुरमुख सदा सुहाग।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणै जो चलै दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावै कोई, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमै विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अग्गै धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर

हाँ पंथ तसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ, जिनी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ। कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं परमरण का चाओ, मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेर मिलाए। हाँ सतगुर बेटो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए रहाओ। होए निमाणी टह पावा पूरे सतगुर पास, निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे साबास। हाँ गुरसा लाहे नर जउ मैं मेले हर प्रपास, सतगुर नो सब को लोईदा जेता जगत सब कोए। बिन भागा दर्शन ना थी है भाग हीन बैरोए, जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया ना मिटै कोए। आपे सतगुर आप हरो आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलै समाए। श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस आत भला, कित बिद मिले रस खाए। जाए पुछो सोहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे प्रवाह ना बोलनी हाँ मल मल तोवा तिन पाए। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है दुख कढै हो मैं मार। रहाओ गुरमुखियां सोहागणी तिन दया पई मन आए। सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए। सेवड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वण तिण सबत है भागहीन नहीं खाए। बिर सतगुर पल्लै ना पवै मनमुख रहे बिललाए। ओए सतगुर आगै ना निवै ओना अंतर क्रोध बिलाए। हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी गुरमुखे अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा दिन स चढ़ फिर आथ वै रैन सबाई जाए। आव घटै नर ना बुझै नित मूसा लाए टुकाए। गुण मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुतकला तमो बिख है अंत बेली कोय ना होए। रहाओ गुरमत हर लिवे उबरे अलिप्त रहे सरनाए। ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दर गए मनिए हरे आप गए गलाए। गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मानो नाम रहन लिवलाए। अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चा सोबा पाए। जिनी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सबको कहे साबास। तिन की संगत देह प्रभ मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम प्रगास। श्री राग महला पंजवा घर पहला, क्या तू रता देख कै पुत्र कलत्र सिंगार। रस भोगै खुशियां करै माणै रंग अपार। बहुत करै फुरमायसी वरतै होए अफार। करता चेतना आवई मनमुखे अंद गवार। मेरे मन सुखदाता हर सोए, गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए। रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोए ना रूपा खाक। हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ या थाक। किसी चेतना पावही बिसरिया सब साक। सिरजन हार भुलाया विणा वैना पाक। लेंदा बद दुआए तू माया करै अकत। जिसनो तू पति आईदा सो सन तुझे अनित। अहंकार करै अहंकारिया व्यापिया मन की मत। तिन प्रभ आप भुलाया ना तिस जात ना पत। सतगुर पुरख मिलाया इको सजन सोए। हर जन का राखा एक है क्या मानस हम मैं रोए। जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए। नानक रता रंग हर सब जग में चरण होए। श्री राग महला पंजवा मन बिलास बौरंकणा दृढ़ पूल खुशियां। छतर तार बादशाहियां विषय से परियां। भाई रे सुख सा संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विधात। दुख सह सामट गया। रहाओ
जेते थान थनंतरा तेते पावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरता या फरिया सबको वसगत कर लयोन बिना मैं खाक रलिया कोड़ ते तीस सेवका सिद साधक दर खरिया ग्रंग बारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पंजवा पाल के उठ पोलिया मिन बुझे मुगदया जान सो प्रभ चेतना आयो छुट्टे गी बेबान सतगुर सेती चित लाए।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवां। घड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जमी सदा संग करना हर पिछान। गुरप्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भक्त जना को राखदा।

कीमत कहन ना जाई है सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो, कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ, मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ, हर जपिय आराधिय आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी ते

दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वडाया पार। बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार, जो मंगिए सोई पाइए नेदारा आधार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत, एक मन एक ते आइए मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात, सदा सदा आराधिए

मन्य पूर राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखण हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया। श्री

पूरा थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिया सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सुपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी

सर्व को आधार। गुर के चरण मन मैं त्याए, छोड़ सगल सियाण पा सा शब्द लिव लाए रहाओ। दुख कलेस ना पौ वे आपै, गुरमंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुरबिन तरियो ना कोए। देख दर्शन मन साधारै, पाप सगले जाहे हाँ तिल कै बलिहारणै जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै, साच हर का नाओ सेवड़ पागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां। संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार जिंतु साज सवारिया हर सिमर होए उदार। जप मानो नाम एक अपार, प्राण मंतन जिने दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अहंकार माते व्यापिया संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार। सत संतोख दया

कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दोकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना दोहू ते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू वट पुरख सुजाना रहाओ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही कहन कहावन एहो कीर्त करला कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गत अवगत कश नदर ना आया संतन की रेण नानक दान पाया श्री राग महला पंजवा कर सतवा तेरा

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हाँ तुध विटो कुरबान तेरे दर्शन कहो बलिहार तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निदान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वडे आईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुरते बाहर किश

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनों वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े।

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए, जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए, कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए, पीर पै कामर सालक साधक सोंदे और शहीद, शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद, बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद, पुछ ना साज

संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाण रव रहे ना तिस्कार संताए साहेबा तोल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वा पारी बन जा रहा आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै र जाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस दिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सचत राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तो लाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाई है रतन विचार मन दीजे गुरे अपने पाई है सर प्यार मुक्त पदार्थ पाई है अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस माए। माया मोह चुकाया गुरमति सहि सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अधिक ही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वही बिन शब्द थाए ना पाए। शब्दे हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सहि सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेटे भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे है निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तां गत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से तीच तलाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गावया थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भक्ति उपजै सहज प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाद लगाए सहजे ही गुणी उचरै भगत करे लिवलाए शब्दे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया ससरण आई पाए सहजे ही हर नाम वसया सच्ची कार कमाए सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए मन

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर, माते दुगणे पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चलै हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाहे लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल दीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

ता भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप हैराता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमह प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती अपरसा, एक लूकना देवै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, काट ना किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुरग मछ पयाल जियो, हौं वारी हौं वारण, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाजना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथिया फिर निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्ना नो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सहिया से सुहागणी, जिनसै नाल प्यार जियो, जिन्ना पाणे कार सियाया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए, जो सबसे ले मिलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगता हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता है आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाण पा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाण पा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो।

तन जो बन सिंह चित हरका नाम ना चित ही बन जा रहा मित्रा। बद्दा छुट्टै जित हरका नाम ना चित प्राणी बिकल भया संग माया। तन सिंह रत्ता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया। धर्म से ती व्यापार ना कीतो कर्म ना कीतो मित कहो नानक तीजै पहरै प्राणी। तन जोबन सिंह चित चौथे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा। लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा। किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जा जम पकड़ चलाया। झूठा रतन हुआ दुआल खिन मैं पया पराया। साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत कहो नानक प्राणी। चौथे पहरे लावी लुनिया खेत

मात पिता सुत ने हो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कै मन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जा जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगन पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा कौ ताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चलै क्या मान कहो नानक प्राणी चौथा पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रति गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरैवन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालीवन जा रहा मित्रा ले

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यों मरै। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानके स्वामी धारा अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखना सो हंदड़ो हबठाए कोई न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो विसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवै जन्म ना हारी है। नानक की बेनंती प्रप है कृपा कर पव जल तारी है। डखना तूड़ी मजन साध खे साई थिए कृपालो लदे हब्बे थोकड़े। नानक हर तन मालो संत सुंदर स्वामी ताम भगत विश्राम। आसा लग जीवते जियो मन तने गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो।

होया जियो। हर कंठ लग सोहया दुख सब जो होया, भगत लखन कर वस भये। मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए। सखी मंगलो गाया इच पुजाया, बौन ना माया होया। कर गै लीने नानक प्रापया रे, संसार सागर नहीं पोहया। डखना साई नाम अमोल, कीम ना कोई जान दो। जिन्ना भाग मथा है, से नानक हर रंग मान दो। संत कहते पवित्र सुनते सब धन, लिखती कुल तारिया जियो। जिन कौ साधु संग, नाम हर रंग, तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो। ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया, पूर्ण कृपा प्रभ करी। कर गै लीने हर जसो दीने, जो ना तावै नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेटत, हरे काम करो लो मारिया। कथ ना जाय अकथ स्वामी, सत कह जाय नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सरिया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिसबने अवर ना कोए। जो मोहे माया चितलाए दे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिने अवर ना कोए, हर गुर शरण आई पाई है। मन जारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए। रहाओ संत जना मिन पाईया, हर किने ना पाया नाओ। विच हम

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे देवै ले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ई के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई है कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास। रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागां विच श्री राग है।

सरै सरैयत करै बिचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै त्यावै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राज दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहिब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाय। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच है, करमी पल्लै पाए। पौड़ी

जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी दुरमत बिन सीक बोध्या पागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से कूरा जियो माज महला पंजवा विसर नाही ए वड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यों तुद ते आई एहो दान मोहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सबके दिया पलिया जाई आनंद बिनोद तोज तमासे तुद पावै सो होना जियो जिसदा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज के रंग करना जियो।

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़ कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाण जियो प्रभ मृणै की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाण जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध स्याणप किछु ना जापे अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जी वै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई।

जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अंदन जागी, बहां पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे, विन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाई है, जे सिमरत वार निचल पाई है, नानक प्रभु है दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगह महल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा, सच्चे मन पतिया मणिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमती मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किसकेरा, साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछोतावणिया। हुक्म पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर कै शब्द नाम निशाणे, सबना कादर लेखा सच्चै। छूटस नाम सुहावणिया, मनमुख पूला ठौर ना पाए, जमदर बद्दा चोटा खाए। बिन नामै को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया, सागत कूड़े सच ना भावै, दुबदा बांदा आवै जावै। लिखिया लेखना मेटै कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया, पेयड़ै पिर जा तो नाही, झूठ विछुन्नी रोवै ताही। अवगण मुठी महल ना पाए, अवगण गुण बख्सावणिया, पेयड़ै जन जाता प्यारा, गुरमुख बूझै तत बिचारा। आवण जाना ठाकर हाए, सच्चा नाम समावणिया, गुरमुख बूझै कथ कहावै, सच्चे ठाकर साचो पावै। नानक सच कहै बेनंती, सच मिलै गुण गावणिया, माज महला तीजा कर पहला। कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। हौ मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया। गुरमती प्रगास हुआ जी, अंदर हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए, तावत राखे ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदन गावै, सहजे पद करावणिया, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिलै ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द वजावणिया, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुरप्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रह रंगराता, दर सच्चा सोजी पावणिया, पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी। अग्ञानी अंदा मग न जाने, फिर आवन जावने आ। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हौ मैं मेरा ठाक रहाया, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, बजरक पाड़ खुलावने आ। हौ मैं मार मन वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवने आ। जीवन मरना सब तो दैताई, जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई, नानक नाम ते आए सदा तू, जम्मन मरण सवारणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ निर्मल अगम्या पारा, बिन तकड़ी तोले संसारा, गुरमुख

माया मोहे जोहे जम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जाय आप कराए, तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

बहु कर्म कमावै मुक्त ना पाए, देसंतर पावै दूजे पाए खोवाए। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द दुख पावनिया, तावत राखै ठाक रहाए। गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुरे आपे मेल मिलाए। मिल प्रीतम सुख पावनिया, एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए। आप डुबे सगले कुल डोबे, कूड़ बोल बिखावणिया, इस तन मैं मन को गुरमुख देखे, पाए पग जाह मैं सोख। सिद्ध साधक मोन तारी रहे लिवलाए, तिन पी तन मैं मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई। नानक जिस नाम देवै सो लेवै, नामो मन वसावणिया।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत अत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निहकर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित आवत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है एको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

अंध कूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अविनाशी कह संतोट न आवणिया।

क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बने अवर न जानने आ। जिस कहो तू प्रभु पया सहाई, तिस तत्ती वाव न लगे काई। तू साहेब सरण सुखदाता, सतसंगत जब प्रगटा बनिया। तू ऊचा था हुआ पारा मोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला। तू मीरा साची ठकराई, नानक बल बल जावणिया। माज महला पंजवा घर दूजा, नित नित दै संभालीऐ। मूला मनो विसारीऐ, रहाओ संता संगत पाईऐ। जे जमकै पंथ न जाईऐ, तोसा हर का नाम लै। तेरे कुले न लागे गाल जियो, जो सवरंदे साई है नरक न सही पाई है। तत्ती वाव न लगई, जिन मन उठाया जियो। सही सुंदर सोहने, साध संग जिन बहने। हर तन जिनी संजया, सही गंभीर पार जियो। हर अम्यो रसायन पीवी, मोह डिठै जन कै जीवी। कार्ज सब सवार लै, नित पूजो गुर के पाव जियो। जो हर कीता अपना, तने गुसाई जापना। सो सूरा प्रधान सो, मस्तक जिसदे भाग जियो। मन मंदे प्रभ अवगाहिया, एह रस भोगण पातशाहिया। मंदा मूल ना उपजियो, तरे सच्ची कारे लाग जियो। करता मन वसाया, जन्मे का फल पाया। मन पावंदा कंत हर, तेरा थिर होवा सुहाग जियो। अटल पदार्थ पाया, पै पंजन की शरण आया। लाए अंचल नानक तारियां, जिता जन्म अपार जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माज महला पंजवा घर तीजा। हर जप जपे मन धीरे, रहाओ सिमर सिमर गुर देओ। मिट गए पै दूरे, सरन आवे पार ब्रह्म की, ता फिर काहे झूरे। चरण सेव संत साध के, सगर मनोरथ पूरे। घट घट एक वर्तदा, जल थल महियल पूरे। पाप बिनासन सेविया, पवित्र संतन की धूरे। सब छड़ाई खसम आप, हर जप पई ठरूरे। करते कियत पाप सो, दुष्ट मोए होए मूरे। नानक रता सच नाए, हर वेखै सदा हजूरे। बारह माहा माज महला पंजवा घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थके आए प्रभ की साम। तेन दुदै ते बाहरी, कित न आवे काम। जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम। हर नहा ना मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई, पठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबूल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निचल ताम। चेत गोविंद आराधिया, होवे आनंद कणा। संत जना मिल पाईए, रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसै गणा। एक खेनु तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रव्या विच वणा। सो प्रभ चेतना आवई, कितड़ा दुख गणा। जिनी राव्या सो प्रभु, तिन्ना पाग मना। हर दर्शन कौ मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसकै पाए लगा। वैसाख तीरन क्यों वाडिया,
ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਹੋ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਓਹੋ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹੋ ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ ਦੈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ

हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। अपन लिया जे मिले विचड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धणी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दोया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास। जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास। जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। वन तिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख आ पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार। जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागनी।

आन आठ साठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान जिसनो देवै दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान माघ सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाहीं जाए इच पुनी वड़ भागनी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंदया लाए हर जिहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सवारयों नि चल दितियां न जाए संसार सागर ते रखियां न बहुना जन्मै ताए जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण नित सलाही है जिसनो तिल ना तुमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर पहो जल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे महादिवस मूर्त पले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्स दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरै पई है तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज युगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतरवास रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सत सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन माणी थाओ हर ओट गही मन अंदरे जब जब जीवा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला
ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੁਹਿਆ ਕੀ ਤੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹੈ ਕਰ ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामन कर मन लए साह संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही रत्न पदार्थ कट ही माही पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है भीतर होंदी वस्त न जाने हाओ ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर।

गुरमत दे भरोसा तेरा, तन मह मैलो नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर कै शब्द पिछाना, रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवार सांझ बयाल, इत उत मनमुख बांधे काल, अहनिस

तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुत जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कह हृदय वसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता,

लब लोभ मुझ कूड़ कमावै, बहुत उठावै पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाक छलिया, ता मन भला पाया।

ताजी तुरकी सोई नारूपा कपड़ के रे पारा किसी नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। कूजा मेवा मैं सब किस चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दें दे नीम दिवालो सारी पस मंदिर की टेरी संचे संचना देई किस ही अंध जाने सब मेरी सोइन लंका सोइन माड़ी संपै किस न केरी। सुन मूर्ख मन अजाना होग तिसै का पाना रहाओ शाओ हमारा ठाकुर पारा हम तिसके वन जारे जियो पिंड सब रात तिसै की मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचिर मना आगे जम दल बिखम कना रहाओ उसार मडोली राखे द्वारा पीतर बैठी साधना अमृत केल करे नित कामनो अवर लुटेन सो पंच जना। टाहे मडोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया पा गए से पंच जना।

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए, हमे विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार, साची बाणी शब्द विचार। गावत रहे जे सतगुर पावे, मंतन राता नाम सुहावे रहाओ। एक गावे एक भगत करे, नाम ना पावे बिन असने। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा अवतार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच टपे बहुत दुख पावे। नचे टपे भगत ना होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाण। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए। बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए। मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे दे वड्याई। गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाओ, गुरम करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैंगल मिकदारा, गुर अंकश मार जीवालन हारा। मन या साध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए। गुरमुखे हो मन लिया सवार, हमें विचों तजे विकार। जो तुर राखिया नु मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महाबिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर शोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान

गुरमुख नाम निदान लै दरगह ले छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जोनी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए अंदर भक्ति रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हों मैं तजे वेकार जन नान करमी पाईया नु हर नामा भक्त भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ा दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण संभलै साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससरै पेइए पिर वसै कहो किद बिद पाइए आप निरंजन अलख है आपे मिलाइए रहाओ आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आइए वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाइए हों मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाइए सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा सेव सकत मिटाइया चूका दियारा तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईए संत जना जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है

नित दिन सरात लालच करे भरमै भरमाया वे गार फिरै वे गारिया सिर पहाड़ उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो करके कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया करके कम लाए नित हर गुण गावै हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे हर सब माया कह बंदे कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सब

जित हर हर नाम जप हर सुख पाया, नित सौदा सूद कीचै बहु भांत कर, माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटै मर जाई। जो गुण सांझी गुर स्यों करे, नित नित सुख पाई, जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे, जिस हरे आप किरपा करे सो वेचे सिर गुरिया गै। जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागे, गौड़ी बैरागण महला चौथा, हमरे मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जन प्रीत लाई सो जानता।

हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मिले कबहू, अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर भावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंद मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग की रे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे।

सीमन अनरसलाया। हर प्रभ चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं, किस ढंग ना मेरा, क्या मोहलै बोलै गुण बिहून, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन कौ पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगाणी, जिंदी ए सो चेतना आवई, पशु हों कर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करै, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हट विहाजया, हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागण महला चौथा, ज्यो जननी सुत जन पालती, राखै नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बार को हर प्रभ की है आने। तन तन गुरु गुर सतगुर पादा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने रहाओ। जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली, ओ राखै चीत पीछे बिच बचरे, नित हृदय सार संभाली। त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखै जी नाली। जैसे काती तीस बतीस है, विच राखै रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती कै किस हाथ है, सब वसगत है हर केरी। त्यों संत जना की नर निंदा करै, हर राखै पै जन केरी, भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है, सब करे कराया। जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर कै वस है, कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित निध्यावो, जन नानक जो अंति अवसर ले छड़ाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले है मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए, हर परम पद लही है। मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले, हों खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुरपुरा क्यों मिले रहाओ। कर कृपा हर मेलिया, मेरा सतगुर पूरा, इश्पुनी जन केरिया, ले सतगुर धूरा। हर भगत दृढ़ावै, हर भगत सुनै, ते सतगुर मिलियै, तोटा मूल ना आवई, हर लाभ ने दृढ़ियै, जिसको हृदय विगास है, पाओ दूजा नाही। नानक तिस गुर मिल उदरै, हर गुण गावाही, महला चौथा गौड़ी पूर्वी। हर दयाल दया प्रभ कीनी, मेरा मंतन मुख हर बोली, गुरमुख रंग पया तगूड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली। अपने हर प्रभ की हों गोली, जब हम हर से ती मन मान्या, कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ। करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब जोत सबाई, हर निकट वसै हर कोली। हर हर निकट वसै सब जग कै, अपरंपर पुरख्या तोली, हर हर प्रगट कियो गुरपुरै, सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम सरनागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंदन हर गुण गावै, मिल सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते। राम मेरा मन तन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर रामै नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से,
जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुरमत मैल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकर तुम जे वड्यावर ना दाते जन नानक नाम लय ता जीवै हर जपिय हर कृपा ते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जीवन दाते मेरा मन हर सेती रचे सतगुर बचन दी अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मंतन बेद लियो हर साचे जेह काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाओ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते सागत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विचविष्टा मर मर पाचे तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे करना चे आपे सह वड्डे प्रस्वामी हमन जारे हैं ताचे मेरा मंत्र जियो राज सब तेरी जन नानके सह प्रभ साचे गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो दे काने जिसते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राने राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुग्ध अशुद्ध मत होते गुर सतगुर के बचन हर हम जाने रहाओ जितने रस अन रस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मेरे सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते सागत मूड दीवाने तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पहचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी कहो किथे हर पौ नसी है हर आपे बगसले प्रभ साचा हर आप छाए छुट्टी है मेरे मन जप हर हर हर मन जपिया सतगुर की सरनाई भज पाओ मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिया रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुखदाता जित सेवे नि कर वसी है गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसी है मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लै लाहा हर मन हसी है हर हर आप दया कर देवै ता अमृत हर रस चखी है मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे ते सागत नर जम कुटी है ते सागत चोर जिन्ना नाम विसारिया मन तिनकै निकलना पिटी है मेरे मन सेवो लख निरंजन नर हर जित सेवे है लेखा छुटी है जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटी है गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरै मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो मेरा मंतन लोच कनेरी राम मेरा मंतन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचित गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरा मन चित है स्वामी साबे तुम हर जानो मेरी आन दिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाता पंथ बताया हर मिलिया आए प्रभ मेरी आन दिन अंध भया वडभागी सब आस पुजी जन केरी जगनाथ जगदीशर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पै जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा एहो मनुमा खिन ना टिकै बहुरंगी दह दह दिस चल चल हांडे
ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ ਮਨ ਠਾਂਡੇ, ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਡੇ, ਰਹਾਓ ਹਮਰਾ ਮਸਤਕ ਦਾ ਦੁਗਾਨਾ, ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਂਡੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਪੌਦੁੱਤਰ ਤਾਰ ਪਰਾਂਡੇ, ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਹੀ, ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਂਡਨ ਗਾਂਡੇ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦ ਬਿਨਸ ਜਾਤ ਹੈ, ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਗਲਾਡੇ, ਹਮ ਜਾਣਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਆਗੈ, ਜਿਉ ਹਰ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਠਾਂਡੇ, ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਂਡੇ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਹਾਓ ਸਾਖਤ ਹਾਰਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਨੰਤਰ ਹੁਮ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਪਾਵੈ ਧੀਠਾ, ਹਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਨਗਰੋ ਕੀਆ, ਹਰ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਚਖ ਡੀਠਾ, ਰਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਲੇ ਮੀਠਾ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗ ਬਸੀਠਾ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈ, ਤਿਨ ਆਗੈ ਅਣ ਪਰੀਠਾ, ਮਨਮੁਖ ਹੀਅਰਾ ਅਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਤਿਨ ਅੰਤਰਕਾਰ ਕਰੀਠਾ, ਬਿਸੀਅਰ ਕਉ ਬਹੁ ਦੂਧ ਪੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਖ ਨਿਕਸੈ ਫੁਲ ਫੁਲੀਠਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਨ ਮਿਲਾਵੋ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਕਸ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਲੀਠਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ, ਲਗ ਸੰਗਤ ਕਰੂਆ ਮੀਠਾ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਹਰ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਹਮ ਵੇਚਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਭਾਗੇ, ਰਾਮ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਰਹਾਓ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਹਉ ਮੰਤਨ ਦੇਵੋ ਘਟ ਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਰੰਪਰ ਗੁਰਬਚਨੀ ਭਾਗੇ, ਅੰਧਿਆਰੈ ਦੀਪ ਗਿਆਨ ਜਲਾਏ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰਾ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਿਓ, ਘਰ ਵਸਤ ਲਹੀ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਸਾਕਤ ਬਦਕ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਤਿਨ ਜਮ ਜੋਹਣ ਲਾਗੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਓਏ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ਭਾਗੇ, ਹਮਰਾ ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ, ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਮੰਗੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਜਪਾਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੇਚਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਮਤ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਹਮ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਰਹਾਓ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਰਾਏ ਕੀ, ਗੁਰਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ, ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਗੱਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣ ਕਉ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਭਇਆ ਮਨ ਮੋਰੈ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਆਪ ਵਿਚਾਇਆ, ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ, ਕਰ ਦੁਸ਼ਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ, ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤ ਆਏ, ਹਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੁਰਮਤ ਬਾਜੈ ਸਬਦਾ ਨਾਹਦ, ਗੁਰਮਤ ਮਨੁਆ ਗਾਵੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਤਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਰਹਾਓ ਹਮਰਾ ਠਾਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰ ਕਮਾਵੈ, ਹਮ ਮਲ ਮਲ ਤੋਵੈ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਕੇ,
जो हर हर कथा सुनावै हृदय गुरमतराम रसायण जेवा हर गुण गावै मन रसक रसक हर रसिया गाने फिर बहुर ना भूख लगावै कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम ना पावै जन नानक कहो हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रमा संतोख पिता कर गुरपुरख्या जन्मा वडभागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वडभागी मिल सुगण सुजाणी जियो मेरा मन तन हर रंग भिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियाड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर को होकेड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करीहा जियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठे टोल टोल मिलिया जियो मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो हर विटड़ियो सदा कोले जियो वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जियो मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपूरा वेख विगस जियो हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा मन अनदिन अनदर हस जियो हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जियो हर आपो पाए हर आपे वेखे हर आपे कार लाया जियो एक खावे बख्स तोट ना आवे एक ना फुका पाया जियो एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना पिख मंगाया जियो सब एको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपूरा लख लखाही जियो हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दाल दो दुख लह जाही जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही जियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन तन बहुत बैरागिया मेरे गोविंदा हर बाजो तन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रहनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मंत्र भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मंत्र आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हां तुद विटड़ियो सदवारी जियो मेरा मंत्र प्रेम प्रम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹਿ ਬਾਰੀ ਜੀਉ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ। ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਨੋ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ, ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ, ਹਰ ਸੁਜਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਉ, ਆਪੇ ਜਗਤੋਂ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪ ਖੇਲੈ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜੀਉ, ਇੱਕ ਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਗਨ

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चाखत होए रह बिस्मादो। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हू जाइए, साध संगत वड भागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे। आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी ग्वारे

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साज दिखलाया, कर कृपा जब मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी, रैन दिनस रहे करंगा, प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्ता गवन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे, गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी, अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग हर जुगते, दिसे सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना, आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

जो तुम राखो तिवि रहना, जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिल तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ के कै, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उठ तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहा व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निकट न आवे माई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साद, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे, सावत वस्तु अपनी लहर रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना भाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, साह संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे, रहाओ सब ते ऊच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेरा ट है, जिस सिमरत जम किशु नाम कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेड़ तहु मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोलै, अमृत बाणी गुरमुख बोलै। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुर ते प्रभ जाते, रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अहमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नींदया, सा संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सा संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर। अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी, रहाओ। सहज सुखिया नंद निदान, राखण हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिन से पै परम आवन जान रखे कर करम पेखै बोलै सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जां को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोलावे राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै क्ले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा ते संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस्या मिलावे सर्वनिदान गुरु ते पावे आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पिछाणा जानी ऊपर प्रभ दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वनिदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म से लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिस मन वसै तेरा जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्वनिधान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टहल न बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निधान हर लख स्वामी जी जन तेरी सरनाई नानक नाम मिलै वड्याई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जी जुगत जा कह हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रवचित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पाओ काहे का मान हर बिसर तो काहे सुख जान रहाओ जिन तारे बहुत तरनिया गास जाकी जोत जी प्रगास जाकी बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपा होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरनी पाहे कोट कलंक।

खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार, जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा, कहो नानक गुरमंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिद महे समाया, गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीक झूठे सब साक, काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुक्म तू आया, रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहां कौन रोत, मेरा मेरा कर बिल्ला ही, मरण हारो जियरा नाही, कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट, गौड़ी महला पंजवा, वड़े वड़े जोधी सह लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग, कौन वड़ा माया वड़ियाई, सो वड़ा जिन राम लिवलाई, रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै, कहो नानक्यो तत् बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, गौड़ी महला पंजवा, पूरा मार्ग पूरा इसनान, सब किश पूरा हृदय इनाम, पूरी रही जा पूरा राखी, पार ब्रह्म की शरण जनता की, रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख, पूरा तप पूर्ण राजयोग, हर कै मार्ग पतत पुनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, करण हार सदवसै हदूरा, कहो नानक मेरा सदगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, संत की तूर मिट अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम, रहाओ संत कै संग मिटिया हंकार, दृष्टिया वै सब एक अंकार, संत सो प्रसन्न आए वसपंचा, अमृत नामृत लै संचा, कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण, गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल प्रगासै, हर सिमरत त्रा सबनासै, सा मत पूरी जित हर गुण गावै, वड्डे पाक साधु संग पावै, रहाओ साध संग पाइए निदनामा, सा संग पूर्ण सब कामा, हर की भगत

सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवां, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निरजोग। ओह बेला को हम बल जाओ, जित मेरा मन जप हर नाओ रहाओ। सफल मूर्त सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कार, सो चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला।

कर कृपा प्रबंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट। कहो नानक मन भई प्रतीत, निर्मल जस पीवै जन नीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर धन को व्यापारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को पए कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश। उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीओ प्रप्यारी। रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए, साध कै संग किल बिक सब धोए। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, तिस्यो आलस क्यों बने माए। खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्याग। रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोभा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मल है जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक से ही जन पूरे।

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रम बिन से गाए गुणनीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रभुदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक। महा गरीब जन साध्या नाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे। कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम नोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय समाल। घर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग। मंत्र राता राम कै रंग रहाओ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलबख सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही। कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे नानेरे। सो वड़पागी निश्चल थान, जह जपिया प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक कौ मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै। पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। साधु संग सिमर गोपाल, बिना मैं झूठा तन माल रहाओ। रूपवंत सो चतर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा। जग मैं आया सो प्रवाण, घट घट अपना स्वामी जान। कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यों सागत नहीं संग। ओह बिखई ओस राम को रंग रहाओ। मन असवार जैसे तुरी सिंगारी, ज्यों का पुरख पचारे नारी। बैल कौ नेत्रा पाए दुहावै, गऊ चर सिंह पाछे पावै। गाडर ले काम तेन कर पूंजी, सौदे कौतावै बिन पूंजी। नानक राम नाम जपचीत, सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवा, सामत निर्मल कहियत तीर। राम रसायन पीवत बीर, हर के चरण हृदय कर ओट। जन्म मरण ते होवत छोट रहाओ।
सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार, सबते उच एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल, गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लय पू

गौड़ी महला पंजवा नित प्रत नावन राम सर की जय। चोल महारस हरे अमृत पी जय रहाओ। निर्मल उदक गोविंद का नाम मज्जन करत पूर्ण सब काम। संत संग तैं गोष्ट होए कोट जन्म के किलविख खोए। सिमरै साध करै आनंद मंत्र रव्या परमानंद। जिसै प्राप्त हर चरण निधान नानक दास तिसै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा सो किछ कर जित मैल ना लागै। हर कीर्तन मैं एहो मन जागै रहाओ। एको सिम

खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपे पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत और दो तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु से मन माने। आगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक को प्रभु कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरुदेव बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे आराध मेरा मन धीरा रहाओ। आन दिन जपो गुरु गुरनाम, ताते सिद्ध पय सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवकी आप पैज रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवको आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई। प्रभ की शरण उबरे सब कोए, करन करावन पूर्ण सज सोए। रहाओ आप मन बसिया करना हारा, पै बिनसे आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे। कह ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास दा शरणाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूर्ण भाई, ताते बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रपत गवाई, नानक हर गुण निरपौ गाई। गौड़ी महला पंजवा, पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गए लेहो अंगुरिया। रहाओ श्रवणन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता मैं तरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुखदातया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्तो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सदी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला, कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अहट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न पय के सवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिखतर या संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के, शंत के घर। महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै,
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਚ ਪਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਬਨ ਬਨ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭ ਊਚਿਆ ਪਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਮਾਂਗਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਰਹਾਉ ਰੂਪਹੀਨ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ, ਮੋਹ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਨਾਹਿਨ ਦਰਬ ਨਾ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ, ਮੋਹ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨ, ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੁ ਫਿਰਤ ਤਸਾਈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸਾਹ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਪਾਏ ਲਗੋ ਮੋਹ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਕਉ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਅਰਪੋ ਤਨ ਰਾਖੋ ਆਗੈ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਫਿਰਾਓ ਤਿਸ ਪਿਛੈ ਵੈਰਾਗੀ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਂਖ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਗਹੋ ਪੂਰਨ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਹੀਅਰੇ ਸੰਗਰਾਖ, ਰਹਾਉ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕੂਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ। ਆਤੀਖਣ ਮੋਕੀ ਫਾਸ, ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੀਨਾ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ। ਕਰ ਗੈ ਲੇਹੋ ਨਾਨਕੇ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਪੇਖਣ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਮੇਰਾ।

दास दासन की अनक पांत करो निहोरा, तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। केन विद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया, विच पढ़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई, एक बसद बिन पंच दुहेले, ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई, अन क्यों पाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई, सहज पया परम खिन मैं नठा, मिल ज्योति जो समाई। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै, सतगुर मजै बतायो रहाओ। जात का देखो ताता तुम ही, मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती, जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे, ता सदा सह सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी। सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निद नाम निधान इकठाई, तो बाहर कैठ जायो। एक कनक अनक भांत साजी, बहु प्रकार रचायो, कहो नानक परम गुर खोई है, इव तत् तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा, औद कट है दिन सुरै नारे, मन गुरमिल का इसवारे। रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला, इहां खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। एहो संसार बेकार सहसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पी आए हर रस, अकथ कथा तिन जानी। जां को आए सोई विहा जाओ, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास ही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण।

बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे, कृपा निर्दयाला राख लेहो पिता प्रभ मेरे, अनाथ कर प्रतपाला। जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत के पाछ कर कृपा, तूर देहो संतन की, सुख नानक एहो बाछै।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहजे अनंत ना संग उन संसार अवर नाम दाते। जगत उदारण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनके उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ता कै चरण परो ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की ऋण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोबन अवध जो दिस सब केश युग मैं काटिया नाम निदान सद नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ। नौ खंड पृथ्वी इस तन मैं रविया निमख निमख नमस्कारा दिख्या गुर की मुंद्रा कानी दृढ़ो एक निरंकारा। पंच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैराग ने आज्ञाकारी तब निर्मल योगी थिए। परम जराय चराई विभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भूता जो ठाकर मस्तक लेखिया। जै पौ नाही तहा आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा योगी वडभागी पेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनाओ सगल त्याय ले मीता हर औखद जां को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो ते तंते गुर शब्द दीपक प्रगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जां को साध संगत विश्वासा। तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोइथ साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा। गुर पेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्तिया गाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहया ना शरण प्रभ तोरी अंध कू मैं हाथ दे राखो कछु सियाण उक्त न मोरी। रहाओ करन करावन सब किस तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गतमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रवराते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै जैसे दृष्ट्यो चन चकोरी। राम संत मैं भेद किश नाही एक जन कई मैं लाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभु होवा अन दिन कीर्तन रस नर मोरी। तुम समराथिया पार अतूचे सुखदाते प्रभ प्राणिया दोहरी नानक कहो प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा तुम हर सेती राते संतो निभाए ले हो मोको पुरख विदाते ओट पहुंचा बो दाते। रहाओ तुमरा मर्म तुमाही जानिया तुम पूर्ण पुरख विधाते राखो सरना ना दीन को करो हमारी गाते। तरन सागर बोध चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समर्था सबके तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जनो चले हमारे साथे। निर्गुणी आरे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा गौड़ी महला पंजवा।

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सो लो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रमतो प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपौ निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ हो कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाई है। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाई है। मेरे मन नाम ले, जम बंते छूटे। सर्व सुखा सुख पाई है, सेव स्वामी सतगुर दाता। मन बंछत फल आई है, नाम इष्ट मीत सुत करता। मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सदगुर अपने की। गुरते पाइये पाले, गुर कृपाल कृपा प्रभतारी। बिन से सर्ब अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन। मिट्यो सगल कलेसा, राग गौड़ी महला पंजवा। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे।

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो, सहज केलो अनद खेलो, रहे फेर पय मेल, नानक गुरशब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ, सेवत सेवत सदा सेव, तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साध की हो कटिए जमजाल, होम जग तीर्थ किए बिचह मैं बदे बिकार, नरक सुर्ग दोए पुंचना होए बहुर बहुर अवतार, शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे, जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार, राग गौड़ी माला महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ, जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ, तौ लो दुखन परे, जाओ कृपाल गुर पूरा पेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप कर्म हों किए, तेते बंद परे, जौ साधु कर मस्तक धरयो, तब हम मुक्त पए, जौ लो मेरो मेरो करतो, तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो, तब हम सहज सोए, जौ

त्यागियो सर्व सुखानंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ। मान अभिमान दो उस माने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाक रह लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टा गयो निरपव पय संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो। जो किश करता है कारण कीनो मन बुरो ना लागयो साध संगत प्रसाद संतन कह सोयो मन जागयो। जल नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागयो। गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ। लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुरपूरै धरियो मन जीतो जग सारी। त्रिपत्या गाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया टुट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे पर्दा ठाकर जाओ भेटियो तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई यो अचंभो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भय बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्वलोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ। सात सिमरत वेद बिचारे महापुरख ने ओ कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख न किन्हू लहया। तीन पवन की लक्ष्मी जोरी बुझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण होत ना कामा जल तो कबहू ना बुझत सगल बिरथे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन मरण निवार नानक जन की तूरा। गौड़ी माला महला पंजवा मोको हिबद को समझावे करता हुए जनावे रहाओ। अनजानत किश इन्हें कमानो जब तब कछु ना सादा देह दिस लयो मन दौरायो कमन कर्म कर बादा। मन तन धन भूमिका ठाकर हाँ इसका हो मेरा भरम मोह कै सूझ सुनाही एह पैखर पै बैरा। तब यो कहां कमावन परया जब यो कछु ना होता जब एक निरंजन रंकार प्रभु सब कुछ आपे करता। अपने कर्तव्य आपे जाने जिने हो रचन रचाया कहो नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया। गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाने एह ओर है मूसे रहाओ। बरत नेम संयम में रहता तिनका आड ना पाया आगे चरण ओर है भाई ऊहा काम न आया। तीर्थ नाए

क्या किश करै के करणै हारा, क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागो पाई जियो। पोथी पंडित वेद खो जनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पत तपवित लग गुर के पैरे जियो, भ्रमपो काड़ किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवां माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिया जियो। संग तुम्हारा मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो। से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइयै जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो। पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहियै जियो। इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो। एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवां। सुन सुन साजन मन।

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। पय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप, तत्ती वाव ना लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दै गुर, गुर सच्चा सृजनहार, गुर तुठै सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा। रहाओ राम गोबिंद जपिंदिया, होवा मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते, सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनो विसारी, जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे है जीविए, भव जल पइए पार, मिल साधु संग उधार होए, मुखी उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस, संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप, दर सच्चे साबास। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू, तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरतियां मिलिया निथावें थाओ। रहाओ होर साध सब फिकिया, तन मन फिका होए, विण परमेसर जो करे, फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साधका, तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आराधिए, उदरे सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए कै पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर, हर के चरण निदान, नानक जाचक।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जान, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाना, जन नानक हो खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसे एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसे सो सगल बिनासे, ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनिस मग्न रह माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद्या बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग, देखता से उठता है। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूढ़ ताहे बिसरावे, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा, साधो एहो मन गहयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सब को हिरलीना, तासो कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फोन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो, निमख ना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की, वृथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बानो, ता सो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु, ता सो नेहु ना लावे, नानक मुक्ता है तुम मानो, जेकट राम समावे। गौड़ी महला नावा, साधो राम शरण बिश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन, सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन, ते तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटै नहीं जाने, पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो, बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मो धर रे। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कशु उपाओ मूत का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला, गौड़ी गुआरे री। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। निध सद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार, गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया, सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया। लाल पय सूहा रंग माया, नदर पई बिगठाक रहाया। उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवै मन हर स्यों लागया। रस संग्रह बिख पर हर त्यागया, पाए बसे जम का पौ भागया। साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यों राता हुक्म अपारा। जात रहे पथ के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म तारा। तुझ बिन कोई ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत। किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए। सिख्या दीख्या भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना। लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना। कथो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी गुआरे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान। गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निजकर ब्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन मन गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्धो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार। हरक सोक उबे दरबार, सुख सहजे जपरद मुरार, नगर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नाम सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरे री

ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम विसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए। गुरमुख दिसै सै सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

ब्रतशील संतोखं रोग ना व्यापै ना जम दोखं मुक्त भय प्रभु रूप नारेखं। जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बाहर सोए रहाओ। निरपौ जोगी निरंजन त्यावै अंधन जागै सच लिवलावै सो जोगी मेरे मन भावै। काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्भ निवारे आप तरै पितरी निस्तारे। सतगुर सेवे सो जोगी होए पैरच रहे सो निरप होए जैसा सेवै तैसो होए। नर नह केवल निरपौ ना अनाथ है नाथ करे बल जाओ। पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने। गुर कै शब्दे आप पछाणे साचै शब्द उदर निशाणे। शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा। गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा। काम क्रोध बिखपुख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा। गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई। दुख विसरै पावै सच सोई। दर्शन देख पई मत पूरी अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ। नेत्र संतोखे एक लिव तारा जेवा सूची हर सारा। सच करनी अवे अंतर सेवा मंत्र तासिया अलाखा पेवा। जै जै देखो तै तै साचा बिन बूझे झगरत जग काचा। गुरसम जावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझे कोई। कर कृपा रखो रखवाले बिन बूझे पशु पहे बेताले। गुर कहया अवर नहीं दूजा किसको देख करो अन पूजा। संत हेत प्रवतर पवन तारे आत्म चीने सो तत् बिचारे। साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ताके दास। गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया। वेद की विपत पड़ी पछतानिया जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया। ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है। रहाओ बल राजा माया अहंकारी जगन करै बो पार अफारी। बिन गुर पूछे जाए प्यारी। हरी चंद दान करे जस लेवै बिन गुरे अंत ना पाए अपेवै। आप भुलाए आपे मत देवै। दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रभ नारायण गर्व प्रहारी। प्रहलाद उधारे कृपा धारी। भूलो रावण मुगदिया चेत लुकी लंका। लूटी लंका सी समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत। सहस बाहो मद कीट मैं खासा हरनाक्षले नखो बिदासा। दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे। रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे। आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संघारे। गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई। राम ना जानिया करता सोई जन को दुख पचै दुख होई। जन मेजै गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावै परम भुलानिया। एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केस चांडूर ना कोई। राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई। बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए। नानक नाम मिलै गुण गाए गौड़ी महला पहला। चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहरा हंडावो। बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरा।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी।

सिद्ध कहावाओ रिद्ध सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हों मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्याग कवरे, भाई मिलै सच सच ऐ सच रे, ऐसा राम पग जन होई, हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जार है, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्तासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाहीं प्रमेला, मंदे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला।

तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावै, वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुरसबदी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणै दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए।

सुल्तान खान बादशाह नैरना नामो पुले जमका दुख सहना मैं तर नाम ज्यो राखो रहना चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सह मरे संचय माया दाम मैं तन दीजे हरि अमृत नाम रैयत मेहर मुकदम सिकदार है निश्चल कोय ना दिसे संसार है अफरियो काल कूड़ सिर मारे निश्चल एक सच्चा सच सोई जिन कर साजी तने सब गोई ओ गुरमुख जापै ता पत होई काजी सेख पेख फकीरा वड्डे कहावे हम मैं तन पीरा काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा

काल न जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोले साच मिथ्या नहीं राई। चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल न जो है, मनमुख कहो आवत जावत दुख मोह है। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है। निज कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते सुख कही है। गुरमत चालो निचल नहीं डोलै, गुरमत साच सहज हर बोलै। पीवै अमृत तत् विरोलै, सतगुर दीखिया दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योत्या पार।

गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण आधारा हर जियो राखो हृदय उर तारा गुरमुख शोभा साज दुबारा पंडित हर पड़त जो

मेरा प्रभु निर्मला सब तैरया सुमाए। गुर कृपा ते मिलै मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए। मेरा हर प्रभु इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए। त्रिग बहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोह गुबार। तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत ना होए। सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर ना कोए। सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई। सदा आनंद हर नाम लिवलाई, गुर मिले हम कौ शरीर शुद्ध पई। हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गए लई। हर आपे कृपा करे नाम देवै, गुरमुख रतन को

मन करहला अत निर्मला मल लागी हम आए परतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हरदय पाल पाल आए ओ पाए कितना लबई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए घर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगह पहनाया हर आब लया गल

नाम बिना जो पहरै खाए, ज्यो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन मैं रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै गुरमती चित लाइयै, सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाईऐ, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे, नानक कामण नहा प्यारी जां हर के गुण सारे, सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हो मैं मारे इन बद मिलो प्यारे, सा तन सोहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रहिया अमृत गहिया दुबदा मारने वारे, नानक कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे,

राम नाम वा पाराग मैं पारा गुरमती तन पाई है सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता आप गुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो घर बैठिया हर पाए घर बैठिया हर पाए सदा चित लाए सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए नामो बीजे नामो जमे नामो मन वसाए नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिरा जियो जां चाखै चित लाए रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जां हर पाए रसना शब्द सुहाए नाम ते आए सदा सुख पाए नाम रह लिव लाए। नामे उपजे नामे बिरसै नामे सच समाए नानक नाम गुरमती पाईऐ आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिरा जियो तन छोड़ परदेस सिधाए दूजे किने सुख ना पायो पिरा जियो बिख्या लोभ लुभाए बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप विच धर्म गवाए। माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जां गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुक्त गवार पिरा जियो शब्द मन नाम वसाए। माया का परम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए। राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बै राग भया जियो क्यों देखा प्रभदाते मेरे मीत सखा हर जियो गुरपुरख बिदाते। पुरखो बिदाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे ओडीणिया कर करे सेवा शीस चरणी मन आस दर्शन माणिया सास सास।

ता एका लेख ठाकर जिन्हें सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुमारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना मोहन जम नेड़ ना आवै तो जपै निदाना। जमकाल तिनको लगे नाही जो एक मन त्या वह मन बचन कर्म जे तो द्यारा दे से सबे फल पावहे। मलमूत मूड़ जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगयाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूर्ण पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान लहे अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो तन कहया तिन जम नेड़ ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद बसहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रव रया

ओवं साधु सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपे सोनो आपे सुख आसनो आपे सुनतो आप ही जासनो आपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सूखमो आपे अस्थूला लखी ना जाई नानक लीला कर

आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखानो नानक एक अनेक पौड़ी ओवं गुरमुखियो अकारा एक सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल भांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूह पांते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा सलोक सही साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहं को जापत सो सा

तंदे कहां व्यापैता हूं, जो एक शाड़ियन कत न जाहूं, जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक पेख्यार ज्ञान ध्यान, मन अठ मिलो ना कोए, कहो नानक कृपा पही, भक्त ज्ञानी सोए। पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो, अनक जुगत शास्त्र कर पातो, ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो, कहत सुन तो कह जोग ना हो। ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह, उसन सी तो समसर सब ता कह, ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा धारी। सलोक आवन आए सृष्ट में, बिन बूझे फस टोर, नानक गुरमुख सो बुझे, जा कै पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक को आया, जन्मत मोयो मोनी माया, गर्भ कुंट में उर तब करते, सास सास स्मृत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवन हार मन बिसराना, तारो कृपा जसै गुसाई, एत्युत नानक तिस बिसरो नाही। सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म, आज्ञा पिन ना कोए, आमन जाना तेह मिटै, नानक जेह मन सोए। पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे, मोह मगन मीठ जोन फासे, इन माया त्रैगुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने, ए साजन कश कहो उपाया, जाते तरो बिखम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट ना माए। सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ, कीने तिन प्रभ आप, पासे अपन हाँ हाँ करे, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी एक आप करावन हारा, आपे पापुन बिस्थारा, या जुग जिजत आपे लायो, सो सो पायो जो आप देवायो, उवा का अंतना जाने को, जो जो करे सूफन हो, एक ते सगला बिस्थारा, नानके आप सवार नहारा। सलोक राज रहे बनता बिनोद, कुसम रंग बिख सोर, नानक तेह सरनी परो, बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा, तह तह बंधन पाए, जेह बिद कतू न छूटी है, सकते उकमाहे, हाँ हाँ करते कर्म रत, ताको पारिया फार, प्रीत नहीं जो नाम से हो, तौ एउ कर्म बेकार। बादे जम की जेवरी, मीठी माया रंग, भ्रम के मोहे ने बुझे, सो प्रभ सधु संग, लेखे

लगना नानक ठाकर सदा अलिपना श्लोक। लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर गंभीर अथाह

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाउट सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर ते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जा सरसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जबत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सह जे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्म ना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिरसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संग कर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी नंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

गंगा ग्रासै काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए। गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै। सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पै नानक ने छपया। सलोक चित चित वो

पौड़ी अनानारण तेसी जिया आत्म जीतै कोए हम मैं अनस्यो लर मरै सो सोबाधु होए मणि मिटाई जीवत मरै गुरपुरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेस अणा को जाणै आपनो एकै टेक आधार रहण दिन सो सिमरत रहै सो प्रभुरख अपार हरेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मै बुझै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो पौड़ी तत्ता तास्यों प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांचते तब तुहारी जाए त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ ताहु संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप सलोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार थित पावो गोबिंद भजाओ संत की सिखले हो प्रीत करो सद एक स्यो ऐसा चा स्नेहो कारण करन करावनो सब दे कै हाथ जिजत लावो तित लगे नानक जंथया नाथ सलोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रह।

दिन दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सब जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं कहूं कहु मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, श्लोक धर जिया रे इक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, धद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मनै प्रगास, तन साचा तेऊ सच साहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस शोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग, गुरपुरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मंतन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहतूरे, श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पच त्रोह मोह मिट नाई, जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सोऊ, नानक दूसरे अवर ना को, श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कल जुग मैं पाया, फिरया ओसर चरै न हाथा, नाम जपो तो कटिया फासा, फिर फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल रहो नानक बेचारे, श्लोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस, नानक सादरवाल पौड़ी, बब्बा ब्रह्म जानते ब्रह्मा, बैसनो ते गुरमुख सोई तुरमा, बीरा अपन बुरा मिटावै, ताहू बुरा निकट नहीं आवै, बांध्यो अपन हाहो बंदा, दोष दे ते अगै को बंदा, बात चीत सब रही सियानप, जिसै जनाव सो जानै नानक, श्लोक पै पंजन अग दुख नास, मनै आराध हरे, संत संग जे रिद बसयो, नानक ते ना भ्रमे पौड़ी, पब्बा परम मिटाओ अपना, या संसार सगल है सुपना, भरमे सुर नर देवी देवा, भरमे से सदक ब्रह्मेवा, परम परम मान खुडै काए, दुत्र महा बिखम एह माए, गुरमुख परम्पै मोह मिटाया, नानक ते परम सुख पाया, सलोक माया डोलै बहु विधि, मन लपट्यो ते संग, मांगन ते जे तुम रखो, सो नानक नामै रंग पौड़ी, मम्मा मांगन हार एना, देन हार दे रहो सुजाना, जो दीनो सो एक बार, मन मूर्ख करै पुकार, जो मांग

पौड़ी। रारा रेन हो सब जा की, ताजा मन छुटे तिरिबा की, रण दरगह तो सी जय भाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह जाए बेकारा, गुरपुर के शब्द अपारा, राते रंग नाम रस माते, नानक हर गुर की नींदा ते। श्लोक लालच झूठ बिखे ब्याद, या देही मैं बास, हर हर अमृत गुरमुख पिया, नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू, दुख दर्द ते मिटै खनाहू, नाम औखद जिरदै हतावै, ताहे रोग सुपने नहीं आवै। हारे औखद सब कट है भाई, गुरपूरे बिन बिदना बनाई, गुरपूरे संयम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासदेव सर्वत्र मैं, ऊनक तू ठाए, अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए। पौड़ी वबा वैर न करिए काहू, घटकट अंतर ब्रह्म समाहू, वासदेव जल थल मैं रविया, गुरप्रसाद विरलै ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मन ते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगलै ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हां हां करत बिहानिया, साकत मुकदया जान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत, नानक किरत कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु, कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना माराधु, रूडो जे बस्यो रिद माही, ओवा की लाड़ मिर्त बिन साही, अड़ाड़ करत सगत गावारा, जे ही है अंबुद्ध बिकारा, अड़ाड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमुख माहे नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट कहो, उक्त सियान पत्याग, गुर दीख्या जे मन बसै, नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा सरन परे अवहारे, शास्त्र सिमरत वेद पुकारे, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सा सा संपूल नहारे, तुम समराथ्या गंता पारे, सरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख पए, मंतन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग। पौड़ी खखा खरा सरा होताहू, जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू, खरा निमाना होत परानी, अंदर जापै प्रभ निर्बानी, भावै खसम ता ओवा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसोवा गणता। असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे, सरन परो हर राए, उकत सियानप सगल त्याग, नानक लय सुमाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना, हिकमत हुक्मना प्रपतियाना, सहस भात करै चतराई, संग तुहारै एक न जाई, सौ सौ जप दिन राती, रे जी चलै तुहारै साथी, साध सेवा लावै जे आपै, नानक तां को दुख ना व्यापै। सरो श्लोक हर हर मुख ते बोलना, मन बूठै सुख होए, नानक सब मैं रव रया, थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कटकट सगल कै, पुर रहे भगवान, होवते आए सदस दीव, दुख भंजन गुर ज्ञान, हाँ छुटकै होए आनंद तेह, हाँ नाही तह आप, हते दुख जन्मै मरण, संत संग प्रताप, हित कर नाम दृढ़ दयाला, संतै संग होत कृपाला, ओरै कछु न किन्हू किया, नानक सब कुछ प्राप्त हुआ। श्लोक लेखै कतै न छूटिया, खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्शलै, नानक पार उतार। पौड़ी लून हरामी गुनै गार, बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत, लाहा माया कारण, दै दे टुंडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ, निमखना मनै बसाए, लालच झूठ बेकार मोह, या संपै मन माहे, लंपड़ चोर निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए, तुद पावै ता बख्श लै, खोटे संग खरे, नानक पावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। श्लोक
ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤੇ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰ ਭਈ ਅੰਤ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਘੜਘੜ ਰਿਹਾ ਬਿਆਪ ਸਲੋਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਪੌੜੀ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਿਆਨਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਪੈ ਭਰਮਾ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ ਸਲੋਕ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ

पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जा कै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैपी हो वनहार हे संतें कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विषम पर एकै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगै मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला
से सिमरै जने आप सिमराए, नानक ताकै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी। प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंदना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिखना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै। जे मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबो न धोवै, हर का नाम कोट पाप होवै।
ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग। जेह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जेह पैंडे महायंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को ना सिंहानू,

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंगे कै नानक जन कै।

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवे, महा उदास्त पितर थीवे। अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तौपी होमे मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखिया उटरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम रहै सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा।

है। जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे, जा की टहल पावे दरगह मान, तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार, नानक राखन हारिया पार। रतन त्याग कौडी संग्रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन ले प्यो तारै धोए, गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्स नाहे कश करै।

मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोहो मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब कोहिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कौ तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पय, सफल देह नानक हर हर नाम लय, बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम, तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्म मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिर प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बजा।

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लोभावे जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पास सेती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताक जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद या पूखन पहरी जै मन ते सिमरत क्यों वालस की जै जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुना, नारक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना।

एक आराध प्राश्त गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मंग तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुब्र परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए नानक नावरते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेव की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सा पूरी रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास नानक नाम जप

मन बिकसै साध चरण तोए। भक्त जना कै मंतन रंग बिरला को पावै संग। एक बस दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वछर सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो है पुनीत भगत पाए लावे मनहीत। हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास। सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार हो कछ ना दृटेता पाप उन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसै व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कौ कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावै तै किसै भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार नानक करते का नहि सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपै परवीन तै भेद कतेब कहां कूचीन। जब अपने आप उरतार है तब सगन अब सगन कहां विचार है। जहे अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाल आशेदा भेद समाया ऊहा किसै व्याप्त माया। आपस कौ आपै आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश। जय एक एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागै चिंता। जय अपने आप पतियारा तै कौन कथै कौन सुनै हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस कौ आपै पहुचा। जह आप रचे ऊपर पंच आकार तेह गुण मैं कीनो विस्तार। पाप पुनते पई कहावत कौ नरक कौ सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल हौ मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान।
ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਜਹ।

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब ऊपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनयाई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभु पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पात होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कश होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत राम रतन मन तन बसै तज काम करो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत को तुरिया पावै कोए नानक संत निर्मल पए जिनमन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग ब्रह्म तो कणो सदा संगार मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहो करत विहाए जिन किए तिस न जाननी चितवै अनक्यो पाए। आद ब्याद उपाद रस कब

बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक सिसो लिवलाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चंदया फल पाए आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बल हारण हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाइय तजिय अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरुद्धर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिया नानक नाम हर रंग सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार पौड़ी नौमी नवे छदर अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारत्रे रमै बकै साध निंद करन सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कै ताई अग्न न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो जत देखौं तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए पौड़ी दसवीं।

हो, कूड़ ठगी गुज्जी ना रह, कूड़ मलम्मा प्लेट तरे हो, कूड़ी करन वड़ियाइया कूड़े स्यो लगाने हो। नानक सच्चा आप है आपे नजर करे महला चौथा, सत संगत में हर उसत है संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है उपदेश करे पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण कौ सब कोई लोचे नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे सतगुर कौ सृजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों तिस काला मोह जम मारिया, तिस अगे पिछे टोई नाही गुरसिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उभरे जिन हृदय नाम समारिया, जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हौ मैं जगत भुलाया दुरमत बिखिया बेकार, सतगुर मिले ता नजर होए मनमुख अंध अंधार। नानक आपे मेल लए जिसनो शब्द लाए प्यार, पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर भिजे, जिन्नी एक मन एक यारा दिया तिनका कंध न कभू छिजे। धन धन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन भावदा से मन सच्ची दरगह लिजै। तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै। सलोक महला चौथा सागत जाए निवै गुरिया गए, मन खोटे कूड़ कूड़ यारे जा गुर कह उठो मेरे भाई बह जाए कुसर बगलारे। गुरसिखा अंदर सतगुर वर

मंत्र बताया हर रसखाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानी है। दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याइया। सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाइया। जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आइया। सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाइया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़। विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा। माया तारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनई बहुरोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। ज्योत पावै सो करे कराया नानक।

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुशी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले उन तिन्ना दरगह ले छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वाल छल कर चत कड दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारिया नू।

नाही। तन बहुतै डिठै तपै धर्म हारिया, पाई एहो तपा ना होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करै, संसार की उस्तति विच होवै, एत दोखै तपा दईए मारिया। महापुरखा की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वेखा लिया, धर्म राए जम कंकरा नो आख छड़िया। एस तपे नो तिथे खड़ पायो, जिथे महा महा हत्यारिया। फिर एस तपै दे मोहे कोई लगो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर वरतिया, सो नानक आख सुनाया, सो बूझै जो दईए सवारिया। महला चौथा, हर भगता हर आराध्या, हर की वड्याई, हर कीर्तन भगत नित गाम दे, हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नावे दी वड्याई, बगसिया नो नित चढ़ाए सवाई। हर भगता नो थिर करी बहालिया, नो अपनी पैज रखाई। निंदका पासो हर लेखा मंगसी, बहु दे सजाई। जेहा निंदक अपने जीए कमाम दे, ते हो फल पाई। अंदर कमाणा सर पर उगड़ै, पावे कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक ते देख विकसिया, हर की वड़ियाई। पौड़ी महला पंजवां, भगत जना

जेहे कर्म कमावदे ते वेहो भणियै, जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धणियै। श्लोक महला चौथा। मनमुख मूलों भुलिया, विच लभ लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरै, शब्द ना करै विचार। सुध मत करतै सब हिर लई, बोलन सब विकार, दितै कितै ना संतोखी है, अंतर दिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मनमुखा नालों टुटी भली, जिन माया मोह

थियो जो नहारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई से वो जियड़े दाता बख्शेंद किलविक साब्य नास होन सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत माया स्वाद सब फिकिया हर मन पावंद। त्याय नानक परमेसर जिन दिती जिंद। सलोक महला पंजवां वत लगी।

कहो कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्टेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो।

भेखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा कीजै हार भरे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगे मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट भई खेड लेले को चूंगै नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जर छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतर सपारी कहो गुर गाज शिव सब को जान।

अब कैसे मरो मरन मन मान्या, मर मर जाते जिन राम ना जान्या रहाओ। मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। कहो कबीर मन भया आनंदा, गया परम रहया परमानंदा। गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावो, खोई तन में ठौर ना पावो। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अनियाले तीर रहाओ। एक पाए देखो सब नारी, क्या जानो सह कौन प्यारी। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर ताको मिले सुहाग। गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई, मुक्तानंत पुकारन जाई। अब कहो राम।

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाए।

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहा

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाबक माराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक तेवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पाव के आपे पवना, जारै खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे ना मैं जोगते।

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए, अपन कया ना लेही। सर जियो काटे निर्जियो पूजे, अंतकाल कौ भारी, राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया, बिखिया सुल पटाना। गौड़ी जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माह निरंजन रही है, बौना पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्त्र रखो, इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पत प्रगासा, सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणै तनख चढ़ाई है, एहो जग बेदिया भाई, दैद सिर बूंदी पवन चुलावै, डोर रही लिवलाई। ओन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अनपव के देखिया, राम नाम लिव लागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्कर खट भेदे।

गुर प्रसाद अगल पही अवर ना तर था बेगा ना रहाओ निवर दूर दूर फोन निवर जिन जैसा कर मान्या अलौती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जान्या तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कही है ऐसा कोई बबेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चल देखी गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया तै उत्पत पर लो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाज दो तै नाही सहज की अकथ कथा है न्यारी तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती हल्की लगे ना भारी रहाओ अर्ध उर्द दो तै नाही रात दिन सतै नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही आगमा गोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लही है कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने सत्संगत मिल रही है गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे पवन पूंजी परगासे ओ तृष्णा गुण परी कट पीतर इन बिद टांड बिसाहे ओ ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार की ओ बनजारा रहाओ काम क्रोध द्वय पहे जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान निबेरे टांडा उतरियो पारा कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैल एक थाका चलो गुण छिटकाई गौड़ी पंचपदा पेवकड़े दिन चार है साहुरड़े जाना अंधा लोक न जाने मूर्ख ए आना कहो डडिया।

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो, पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कहे जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद्ध पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बहु फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बड़ा मही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद मान कलही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पादो दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ अहा तहा किश नाही, पाई तत्तै नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही। तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई। ए संसा मोको अंदन व्यापै, मोको को ना कह समझाई रहा। जह बरपांड पिंड तै नाही।

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म तर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरेओ मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगा ने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो पासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूट।

तस कर निर्णय आवै। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कत ही ना जावै। हमरा तन माधव गोबिंद तरनी धर, एह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिय रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादक, खोजत पए उदासी। मन मकांजे बा नारायण, परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंब थंब मन धावत, परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुप्त ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिन, कही ना सच रहयो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत, कने ना कराओ लयो। तैसे प्रमता नेक जोन मैं, फिर काल हयो। या तन जोबने अरसुत दारा, पेखन कहो जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिनको मंदर, चौदे ठाठ ठयो। कह कबीर पै सागर तरन कहो, मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही कश आहे ना मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी मैं पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिर मैं बिनस जाए हंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात पावै ता हुक्म नावै, इस बेड़े को पार लंगावै। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़, जो जग में आयो। लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता। लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी। गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछी है, डरिय ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने ना की जयास। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान रहाओ। क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान। जब लग जुगत ना जानिए, पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, बिपत देखना रोए। जो संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जे कट बसै मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, तै सोए संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और रहाओ। और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए। जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवै बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चित्त आ, राम सिमर बैराग।
ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ ਲੋਚਨ ਪਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੀ ਜੈ ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀ ਜੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਜ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ ਉਹ ਆਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਟ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇ

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुखरंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावै मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापो रे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्ता नूप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जह बोल तै मन न रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तसल है न कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ताको पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंग अशेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार याद मैं जाना, लिखियर मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस विघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहा कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसम जान खिमा कर रहे, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कत ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा। नंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा। जजा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै। चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नया निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेरा पायो ताहे। टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कत ना जावा। रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जो डर डरै ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे। टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़गड़े हो सो।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बद्धक जन तेउ मुक्त भय, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब

गत लखी ना जाए, करो कृपा भ्रम चूकई मैं सुमत देहो समझाए। जोगी सिर पावे नहीं तो गुण कथने अपार, प्रेम भगत कै कारण है कौरव दास चमार। गौड़ी बैरागण एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सत युग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार। तीनों युग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार, पार कैसे पाए बोरे मोसो को न कह समझाए। जाते आवागमन बिलाए रहाओ, बहुविध धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए। कवन कर्म ते छूटी है जे सादे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म बिचारी है शंका सुन वेद पुराण। संसा सद हृदय बसै कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है घट भीतर बिबद बेकार। शुद्ध कवन पर होए बो सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत जानत सब संसार। पारस मानो ताबोश होए कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत ललाट। उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी परम बंधन काट बेकार। सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार, अन

देखो तेरे अनेक पड़े बो सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड्यावर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सिरहिट सब यो पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला पहला, चौपदे कर दूजा, सुन वड्डा आखै सब कोई, केवड़ वड्डा डीठा होई, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ जीरा रहाओ, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया, तुद बिन सिद्धि कने ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाकराईया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा, आसा महल

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए।

नाथ आसा महला पहला जे दर मांगत पूक करे महली खसम सुने पावे तीर्क पावे तके एक वडाई दे जानो जोत ना पूछो जाति आगे जात ना हे रहाओ आप कराए आप करे आपो लामे चित धरे जा तू करन हार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप यो पाए आपे दे आपे दुरमत मने करे गुर प्रसाद वसे मन आए दुखा नेरा विच्चों जाए साज प्यारा आप करे अवरी को साज ना दे जे किसे देव खाने नानक अगे पूछना ले आसा महला पहला ताल मदीरे कटके काट दोलक दुनिया वाजे वाज नारद नाचे कल का पाओ जति सती कह रख उपाओ नानक नाम विटो कुर्बान अंधी दुनिया साहेब जान रहाओ गुरु पासों फिर चेला खाए ताम प्रीत वसे कर आए जेसो वरिया जीवन खान खसम पछाण सो दिन प्रवान दर्शन देखे दया ना होए लय दते बिन रह ना कोए राजा न्याओ करे हथ होए कहे खुदाए न माने कोए मानस मूर्त नानक नाम करनी कुत्ता दर फुरमान गुर प्रसाद जाने मेहमान ता किस दरगह पावे मान आसा महला पहला जेता शब्द सोरत तुन तेती जेता रूप काया तेरी तू आपे रसना आपे बसना अवरना दूजा कहो माई साहेब।

तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रतने उपाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूपया पारा, शब्दा नहद सो सौराता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश लीजी लीजै रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहल कीचै अरदास, पाप पुन दो साखी पास, जैसा तू करै तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जेही तू मत देहे तेही को पावै, तुझ आपे पावै तिवै चलावै। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शहु भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जां सह मिलिया तां जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। पंत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नजर करे सासो आगन होए। आसा महला पहला, गृहो बन समसर सहि सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जग दिसै अंश, जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਪਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਇਹੋ ਜਿਤ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ ਲਾਗੀ ਮੈਂ

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिम राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ नानक बख्से पूछना होए दूजा मेटै एको सोए आसा महला पहला एक आवै एक जावै आई एक हर राते रहै समाई एक धरन गगन में ठावर ना पावै से कर्महीन हर नाम ना त्यावै गुर पूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिखवत अत भौजल गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ जिनको आप लय प्रमेल तिनको काल न सकै पेल गुरमुख निर्मल रहै प्यारे ज्यो जल अंब उपर कमल निरारे बुरा भला कहो किसनो कहिय दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहिय अकथ कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद अठसठ मज्जन हर रस रेद गुरमुख निर्मल मैल ना लागै नानक हिरदै नाम वड्डे तुर भागै आसा महला पहला निम्न पाए

प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहयो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंध, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगह बैसन होवे थाओ, जा तुद भावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वाफल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जुगत नाही, कह नानक जीवा ले जिया, जय पावे तै राख तुही, आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जा जा चो नाओ, गुरप्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चज्याचार रहाओ, बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम संभाल, एथे उथे निभी नाल, विन्ना में होर कर्म ना पाल, पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार, भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े ने कीमत पाए, अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने सावास, सच्चे तख्त

क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर विडाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली, उपजे बिन सह दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है, बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है, तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे, फिर से मिलना ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा, हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम सा मीत ना यवर कोई, जो तू राखै तिवी रहना, दुख सुख दे वै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता, गुरमत पाए सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदे, मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ, सच नाम जा नव निद पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपर जाहे, गुर दीखिया ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे, नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या।

एक ना परिया गुण कर धोवा मेरा सह जागै हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सह जागै हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निराशी रहाओ हम मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवै पतार तव नानक कंते मन पावै छोड़ वडाई अपने खसम समावै रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी।

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरण पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिया लख संजिए खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखै ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़ै पुराण जा पत लेखै ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतिया दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द बंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा कर पंजवा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रह जैसे पवै उदासे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेसर पट ले तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे

अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैसाओ कल्प त्यागी बादं सिंगी शब्द सदा तुन सोहै एनिस पूरे नादं पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेपूतं हर कीर्त रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्णा नेकं कहो नानक सुन पार्थर योगी पार ब्रह्म लिवेकं आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै कर करनी कस पाई है पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लवलागी शब्दा नाहद गहया रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत कावा पारी होवे कैमद शूशै पाओ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करै किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुवै जन्म ना हारै कहो नानक सुन पार्थर योगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष ना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोस ना होई रहा हो सकता सीहो मारे पै वगै खसमै सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को ना उतराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने मर मर जीवै तक्ष पाए नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै सब सच्चै बैराग खड़ दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगमे अपारा गुर कै दर्शन मुक्तगत होए साचा आवसै मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार निगुरे कौ गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर कै शब्द सुख सां शरीर गुरमुख ता कौ लगे ना पीर जम काल तिस नेड़ ना आवै नान गुरमुख साज समावै आसा महला तीजा शब्द मुवा

गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे, पूरे गुर कै शब्द समाहे रहाओ। गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम वखाणे। साची बाणी सूचा होए, गुण ते नाम प्राप्त होए। गुणिया मोलक पाए ना जाहे, मन निर्मल साचा शब्द समाहे। सेवट भागी जिन नाम ते आया, सदा गुण दाता मन वसाया। जो गुण संग्रह तिन बलहारे जाओ, दर साचे साचे गुण गाओ। आपे देवे सहि सुभाए, नानक कीमत कहन ना जाए। आसा महला तीजा, सतगुर विच वड्डी वड्याई, चिरी विछुने मेल मिलाई। आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर की कीमत केन बिद होए, हर परंपर अगम गोचर। गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ। गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए। ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए। विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर। बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए। हर का नाम मीठा अत रस होए, पीवत रह पियाए सोए। गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए। आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर। सेवत ही सुख सांस शरीर, शब्द तरे जन सहज सुभाए। तिन कै हम सद लागे पाए, जो मन राते हर रंग लाए। तिनका जन्म मरण दुखला था, ते हर दरगह मिले सुभाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए। हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ा आपे दूर। आखने आखे बके सब कोए, आपे बख्श मिलाए सोए। कहना कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए। आत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया। बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी होए। दूजे पाए ना लागे कोए, मूल लागे से जन परवान। आंदन राम नाम जप हिरदय, गुर शब्द हर एक को जान रहाओ। डाली लागे नेफल जाए, अंधी कमी अंध सजाए। मनमुख अंदर ठौर ना पाए, बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माहे पचाए। गुर की सेवा सदा सुख पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए। नामे नाम करे विचार, आप तरे कुल उदरनहार। गुर की बाणी नाम वजाए, नानक महल शब्द घर पाए। गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल शब्द उर्त गवाया। आसा महला तीजा, मनमुख मरे मर मरण विगाड़े। दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता। आत्म ना चीने परमे विच सूता, मर मोया सबदे मर जाए। उस्तत निंदा गुर समझाण आई, इस युग में लाहा हर जप लै जाए रहाओ। नाम भी हुण गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए। नाम भी होनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई। मन चंचल बहु चोटा खाए, एथों छुड़किया ठौर ना पाए। गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास। अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई। निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा। आसा महला तीजा,
ਲਾਲੈ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ, ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਸੋਗ ਹਰਖ ਦੋਇ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਬਦ ਉਧਰੈ ਰਹਾਉ, ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਤੁਰੋ ਫੁਰਮਾਈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਕੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਵਸਾਈ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਵੱਖਰ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਲਾਲਾ ਹੋਏ, ਊਤਮ ਜਾਤੀ ਊਤਮ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਪੌੜੀ

आए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहि समाए, नावै जेवड़ होर धन नाही कोए, जिसनों बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहुवाजे वजाए, एहो मन अंधा बोला है, किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बलै ना सो जी पाए, गुरमुख भगत कड़चानन होए, आप पछाण मिलै प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख निरत हर लागै पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आवसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, निहचल भगत हर सो चित लाए, भगत रते तन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर कै पाणे सतगुर मिलै, सच सोजी होई, गुर प्रसादी मन वसै, हर बुझै सोई, मैं सहो दाता एक है, अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै, ता सदा सुख होई रहाओ, इस जोग में निरपो हर नाम है, पाईए गुर विचार, बिन नावै जम कै वस है, मन मुख अंध गवार, हर कै पाणे जन सेवा करै, बूझै सच सोई, हर कै पाणे सा लाहीए, पाणे मन्या सुख होई, हर कै पाणे जन्म पदार्थ पाया, माती उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, तू करता सचियार मंडा साई, जो तौ पावै सोई थिसी, जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन्ना वर्तन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जान आए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवे

तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर स्यो तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी। जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सतसंग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या

मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग, दूजे पाए पवै बिख माया, भागहीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आपी आया, गुरपुरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सैना।

नामहीन कालख मुख माया, नाम बिना त्रिक त्रिक जीवाया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम देवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा, रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हून माया मल तारी, विण गुण जन्म मोए अहंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मथ तत कढ़िए, आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा, रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थापो थापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अंत तरंगा, जप जप नाम।

ऐसी भगत बने आई, हाँ हर बिन खिन पल रह न सकौ, जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन, कब को राग तुन उठावै, मेलत चुनत खिन पल चसा लागे, तब लग मेरा मन राम गुन गावै। कब को नाचे पाप पसारै, कब को हाथ फसारै, हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागै, तब लग मेरा मन राम सुमारै। कब को लोगन को पति आवै, लोक पतीने ना पत होए, जन नानक हर हृदय सत आवो, ता जय जय करे सब कोए। आसा महला चौथा, सत संगत मिली है हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन, अज्ञाना दे राजाए। हर जन नाचो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले मेरे भाई, हम जन के तो वह पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे, अनदिन हर लिव लाए, जो इच्छाओ सोई फल पावो, फिर भूख न लग आए। आपे हरे ब्रह्म प्रकर्ता, हरे आपे बोल बुलाए, सही संत भले तुद पावे, जिनकी पत पावे थाए। नानक आखना राजे हर गुण, ज्यो आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर अठवां, राग आसा कर अठवें के, काफी महला चौथा। आया मरण तो राहो हम मैं रोई है, गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है। गुरपूरे साबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ। पूर्व लिखे डेहे से आए माया, चलन अज के कल तुरों फुरमाया। बिरथा जन्म तिन्ना जिनी नाम विसारिया, जुए खेलन जग के हो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा, जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर सच्चे सच्यार महल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है, अंदर नाम ते आए हर गुण गाई है। अंतर वसजा नेक मनमुख नहीं पाई है, हमे गर्भ है गर्भ आप खुआई है। नानक आपे आप खुआई है, गुरमत मन परगास सच्चा पाई है। राग आसावरी कर सोलवें के दो, महला चौथा सुधंग। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाँ आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं, सतगुर मोको हर नाम बताया, हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकौं रहाओ। हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हाँ हर बिन रह ना सकौं, हाँ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिदतार, किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी महला चौथा, माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई, हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकौं, जैसे कर हल बेल रिझाई रहाओ। हमरा मन बैराग बिरगत पायो, हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह ना सके, तैसे मोहे हर बिन रह न जाई। राग शरण जगदीशर प्यारे, मोहे सरदा पूर हर गोसाई, जन नानक कै मन अंद होत है, हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा,
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਈ ਫਿਰ ਖਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੁਖ ਬੈਠਾਲੀ ਤਿਸ ਪਉ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਵਿਵਾਦੇ, ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਐਸਾ ਦੇਖ ਬਿਮੋਹਤ ਹੋਏ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਧਰੋਹਨ ਧਰੋਹੇ ਰਹਾਉ, ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੇ, ਇੱਕ ਸੰਚੈ ਗ੍ਰਹੀ ਤਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪੈ, ਇੱਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵੈ ਤਿਨ ਬਹੁਤ ਕਲ ਪਾਵੈ, ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ, ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੂਲਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭ ਸਵਾਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ, ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਸੂ ਤੇ

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवा, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह शोभावंता। गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ। तिचर कंत बो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगुण स्वरूप। इच्छ पूरे मरकंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परिवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। तन सो ग्रेहो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवा, मता करो सो पकन ना देई। सील संयम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावै। गृह बसन ना देई वख वख परमावै। घर की नायक घर वास ना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसा तह नाले बैसै, सगल भवन में सबल परवेसै। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हों कै पह जाई। सुन उपदेश सतगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक पए अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीय मता दोय मानख पहुंचावो। तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब कि छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर। तेरे सेवको किसकी कान, सगत पूला फरै बेबान। तेरी वड्याई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवा, परदेस चाग सौ देखो आया। वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै यानी। देख रत्नो मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए। वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास। अमोल रत्न अमोला रास, विष्ट सुभाई पाया मीत। सौदा मिलिया निश्चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौन ना पानी। सहज विहाजी सहज लै जानी, सत कै खटिया दुख नहीं पाया। सही सलामत कर लै आया, मिलिया लाहा पै आनंद। तन सा पूरे बख्शिंद, एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया। सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो। नै देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी। बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो। की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना। क्या जाने हो लोका जाना। रहाओ
सुहाग हमारो अगुण सोहयो, कंत मिलयो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोबा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया परण सोबा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दू की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो परै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवै बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिरे हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख बामण प्रभु समाल, देखत सुनत तेरा।

दुख रोग भय गत तंते, मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुरसबदी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुरसीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अगाए।

हर हर राय, नाम तेरा जब जीवै नानक, ओत पोत मेरा संग सहाय। आसा महला पंजवां, अरड़ावै बिललावै निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै, नाले लय सधावै, अनहोंदा अजगर भार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारे जे होए बतीतै, सो नानक आख सुनावै, भगत जना को उसका आनंद है।

बिगड़ रूप मन में अभमान, सोहने स्वरूप सुजान बिचखनो, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाक साल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

है तिस नेह चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ। काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे त्रिगुटी तनिष करवासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, धरन पड़े तिस लगे ना काला, भ्रमत फिरे तिन किशु ना पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल पए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी।

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान, बिष्टा अस्त रक्त परेटे चाम, इस ऊपरले राख्यो गुमान, एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक, कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइए हर पुरख सुजान, आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे, एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मन ना रह कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको परे मिलावे रहाओ, चार पहर चौ जुगे समाने, रहन पई तब अंत ना जाने, पंच दूत मिल परो विछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पिछोड़ी, जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया, आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान, हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई, दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ, हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माही दीबान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो, गुर कृपा ते एह मत आवै, जन नानक हर कै अंक समावै, आसा महला पंजवां, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई, सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा, सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सरसद ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैण में हानि सह सुभाए, आसा महला पंजवा, कर कृपा हर प्रगटी आया, मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई, पाहे न जाले जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ, तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया गाए, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा महला पंजवा, जैसे किरसान बोवे किरसानी, काची पाकी बाड़ परानी, जो जन्मे सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ, दिन ते सर

जो तू करे सोई प्रवाण, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवां, निकट जी कै सद ही संगा। कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोम नहारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे दास

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो एहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरा हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन सच नाए अठ सठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर

माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया। जाप ताप कश युगत न मोरी गुर नानक शरणागत तोरी। आसा महला पंजवा ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता। आन रसा खिन मैं लै जाता हर रस के माते मन सदा आनंद। आन रसा मैं व्यापै चिंद हर रस पीवै अलमस्त मतवारा। आन रसा सब हो चेरे रहाओ हर रस की कीमत कही ना जाए। हर साधु हर सुमाए लाख करोरी मिले ना के हे। जिसे प्राप्त तिस ही दे हे। नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साद। ईत ऊत कत छोट ना जाए नानक गीदा हर रस माहे। आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावै छुटकै दुरमत अपनी तारी। होए नमाणी सेव कुमावै ता प्रीतम होवै मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा। सुख पावै तू सुख मन नारी। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिखत्यास निवारी। दासन की होए दा दासरी ता पावै सो बाहर द्वारी। इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी। जो एहो मंत्र कमावै नानक सो भौजल पार उतारी। आसा महला पंजवा दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै नाकाम। मिल साध संगत पज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै। रहाओ जप तप संजम तर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा। आसा महला पंजवा तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा। तू मेरे मन माही तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही। तुमरी ओढ़ तुम्हारी आसा बैठत उठत सोबत जागत। विसर नाही तू सास गिरासा। रहाओ राख राख सरन प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला। नानक के सुखदाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए। प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या ताप मुआ बिख खाए। रहाओ पाला ताऊ कछु ना व्यापै राम नाम गुण गाए। डाकी कोचत कछु ना लागै चरण कमल शरण आए। संत प्रसाद पए कृपाला होए आप सहाए। गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा औख दिखायो हर को नाओ। सुख पाए दुख बिन सिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे अंध पया समिटे विसूरे। रहाओ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा बांशत नाही सो बेलायाई बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई। ठंडी ताती मिट्टी खाई ओहना बाला बूढ़ा पाई। रहाओ नानक दास सा सरनाई गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा सदा सदा आया तुम परगास सा संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे शीतल सांस सदा सुख पावै। किल विख जाहे सबे मन तेरे। रहाओ कहो नानक जाके पूर्ण कर्म सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म। दूजे करके चौतीस आसा महला पंजवा जा का हर स्वामी प्रबेली पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। रहाओ कर कृपा चरण संग मेली सुख सहज आनंद सुहेली। साध संग गुण गाया तोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਦ ਸਰ ਇਹ ਖੇਲਤ ਸਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਭਾਰੇ ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਪਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਸਭ ਕੀ ਰਿਣ ਹੋਏ ਰਹਿ ਮਨੁਆ ਸਗਲੇ ਦੀਸੈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸੰਬਦੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਜੀ ਸੁਮਾਰੇ ਏਕੋ ਏਕ ਆਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਕੈ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ਜਪ ਜਪ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਉਧਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗਤ ਆ ਗੋਚਰ ਇਹੋ ਸਭ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਕਿਆ ਹਮ ਜੰਤ ਕਰੈ ਚਿਤਰਾਈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੇ ਤੁਜੈ ਮਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਰਾਖੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰ ਦੇਹ ਸੁਮਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਅਗਮਿ ਅਪਾਰ ਰਹਾਓ ਜੈਸੇ ਜਨਨ ਜਠਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓ ਰੇਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਰ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਦੇ ਦਯੰਤਰ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਦੀਸੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਰ

हर आज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगह काम न आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याई है रहाओ महाबचित्र सुन।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा, मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला, चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवां महला पंजवां, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता सियाण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया, जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवै पराई, अपना कीता पावै, इहा सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावै, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच ना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ, किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना रखे, ओ किस पै करे पुकारा, निंदक की गत कत हू नाही, खसम ए वै भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतां टेक

बाहर तो है अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहा काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नजर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचा आप निवारे, पंच जनाले वसगत रख है मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखाव जो ताल कुंगुरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिजावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै। कर संग साधु चरण पखारै, संत तूर तन लावै, मंतन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावै। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे। आसा महला पंजवा, आदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठ आई रे, पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे। घर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नौके हर, कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाई थूनिया छपरा।

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वडे आई ता तेरी वडे आई, ए त्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुरु, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाइए, नानक नाम आधार हीओ। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किश हुआ, यवर के जाने जाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काढ़ लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्य सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जीत तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना को भख। ओहो सुख ओहा वडियाई, जो प्रभ जी मन पाणी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंगमाणी। तुदया गै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ना जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आई है। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हराओ रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ता कै संग तरओ रे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना, सतगुर पेट भया मन निर्मल, जापे अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया। गुर प्रसाद पहे जनमुक्ते, हर हर नाम आराध्या, राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने पाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद गुरबाणे।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई यो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया पणत नानक मेरा मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

निर्भिख बिनासे दुख दर्द दूर, पय पुनीत संतन की तूर रहाओ। प्रभ के संतो दारण जोग, तिस भेटे जिस तोर संजोग, मन आनंद मंत्र गुरदिया, तृष्ण बुझी मन निचल थिया। नाम पदार्थ नवनिध सिद्ध, नानक गुरते पाई बुद्ध, आसा महला पंजवा। मिटी त्यास अज्ञाना देरे, सा सेवा कटे कनेरे, सुख सहज आनंद घना, गुर सेवा ते पय मन निर्मलो, हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सेव मन का मूर्ख टीठा, प्रभ का पाना लागा मीठा। गुर पूरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म एहो सफल पाया, कहो नानक प्रभ करी माया। आसा महला पंजवा, सतगुर अपना सद सदा समारे, गुर के चरण के संग चारे। जाग रे मन जागन हारे, बिन हरे अवर ना आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पासारे रहाओ। गुर की बाणी से रंग लाए, गुर कृपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा नाही थाओ, गुरदाता गुरदेव नाओ। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पहर नानक गुर जाप। आसा महला पंजवा, आपे पेट बिस्तारी साख, अपनी खेती आपे राख। जत कत पेखो एक ओही, कटकट अंतर आपे सोई रहाओ। आपे सूर किरण बिस्तार, सोई गुप्त सोई आकार। सरगुण निर्गुण थापे नाओ, दुह में लेके कीनो ठाओ। कहो नानक गुर भ्रम पौ खोया, आनंद रूप सब नैन अलोया। आसा महला पंजवा, उकत सियानप किशु ना जाना, दिन रहन तेरा नाम वखाना। मैं निर्गुण गुण नाही कोए, करण करावण हार प्रभ सोए रहाओ। मूर्ख मुगद अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आसमन तारी। जप तप संजम कर्म ना सादा, नाम प्रभु का मने अरादा। किशु ना जाना मत मेरी थोरी, बिन मत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा, हर हर अख

हर माला वर्यंतर धारै, जन्म मरण का दुख निवारै, हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतै न डोलै, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवां, जिसका सब किछु तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहें,

पंजवा तू मेरा तरंग हम इन तुम्हारे, तू मेरा ठाकर हम तेरे द्वारे, तू मेरा करता हम सेवक तेरा, शरण गही प्रभु गुनी गहेरा रहाओ। तू मेरा जीवन तू आधार, तुझे पेख बिकसै कौलार, तू मेरी गत पत तू प्रवान, तू समर्थ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुणतास, नानक की प्रपै अरदास। आसा महला पंजवा रोवन हारै झूठ कमाना, हासा सो करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवै को हासा सपावन रहाओ। बाल व्यवस्था ते बरदाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरतै संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ता का परवान। आसा महला पंजवा सोए रही प्रभ खबर ना जानी, पोर पया बहर पछतानी, प्रे प्रेम सहज मन अंध धरोरी, प्रभ मिले बेकी लालसा, ताते आलस कहां करोरी रहाओ। कर मैं अमृत यान निसारयो, खिसर गयो पूम पर डारयो, साध मोहे लादी हंकारे, दोष नाही प्रभ करण हारे, सा संग मिटे भरम अदारे, नानक मेली सृजन हारे। आसा महला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवै तेरी मया, सिमरत नाम सगल रोखया रहाओ। अनक दुख देवै अवरा कौ, पहुंच ना साकै जन तेरे कौ, दर्स तेरे की प्यास मन लागी, सहजानंद बसै बैरागी, नानक की अरदास सुनी जै, केवल नाम हृदय मैं दीजै। आसा महला पंजवा मन तृप्तानो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद भली बनी, जा कै गृह सब किश है पूर्ण, सो भेटिया निरपै धनी रहाओ। नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा बिकराल, ठाकुर अपने किन्नी दात, जलन बुझी मन होई सांत, मिट गई पाल मन सहज समाना, नानक पाया नाम खजाना। आसा महला पंजवा ठाकुर स्योजा की बनियाई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, कछु ना थोरा हर भगतन कहो, खात खर्चत बिलशत देवन कौ रहाओ। जा का तनी अगम गुसाई, मानख की कहो के चलाई, जा की सेवा दस अष्ट सिधाई, पलक दिष्ट ताकी लागो पाई, जा कहो दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तनकामी। आसा महला पंजवा जो मैं अपना सदगुर त्याया, तब मेरा मन महा सुख पाया, मिट गई गणत बिना सियो संसार, नाम रते जन पे भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहिब चीत, तौ पो मिट्यो मेरे मीत, जो मैं उठ गई प्रभ तेरी, ता पूर्ण होई मनसा मेरी, देख चलत मन पे दिलासा, नानक दास तेरा प्रवासा। आसा महला पंजवा अंदर मूसा लाई टुकाई, गिरत कु मैं खाए मिठाई, सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत, कबु ना सिमरै सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया निचर गृह बांधया, काल कै फांस सख्त सर सांधया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निचल कर पाया, सा संग जप्यो हर राए, नानक जीवै हर गुण गाए। आसा महला पंजवा दो तुके नौ, उनके संग तू करती केर, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे, उस बिना को मुख नहीं जोरे, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दुहे रीरी रहाओ। उनके संग तू गृह मैं माहर, उनके संग तू होई है जाहर,
ਉਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਪਪੋਲ, ਉਸ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਛੁਟਕੀ ਰੋਲ। ਉਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਹੱਤ, ਉਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੁਮ ਸਾਕ ਜਗਤ। ਉਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਸਭ ਥਾਟੀ, ਉਸ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਟੀ। ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਬਾਂਦਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਨਕ ਥਾਪ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਤਨ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਕਉ ਦੁਖੇ। ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਉ ਮਾਰਨ ਵਾਰਾ, ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਨਾ ਉਸ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਂਧੇ, ਨਾ ਉਸ ਤੰਦਾ ਨਾ ਹਮ ਤਾਂਦੇ। ਨਾ ਉਸ ਮੈਲ ਨਾ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹਮ ਸਦਕੇਲਾ। ਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ, ਨਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ। ਨਾ ਉਸ ਭੂਖ ਨਾ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ। ਹਮ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ, ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਖ ਹੋਏ ਪਰਮ ਭੰਗਾ, ਹਮ ਓਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਂਤਨ ਆਗੈ ਧਰੀਏ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਕਰੋ ਤਾ ਜਬ ਮਹਾਨ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਈ, ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਰਹਾਓ। ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ, ਉਨਕੀ ਰਿਣ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਾਥੈ ਭਾਗ ਤਾਂ ਪਾਵੋ ਸੰਗ, ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵੋ ਸਭ ਨੇਮਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪੋ ਸਭ ਹੋਮਾ। ਗਰਭ ਮੋਹ ਤਜ ਹੋ ਬੋ ਰੇਨ, ਉਨਕੈ ਸੰਗ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈਣ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਇਹੀ ਆਰਾ ਦੋ, ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧੋ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਉਮੈ ਮਲ ਖੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ

प्रभ की प्रीत पय सगल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सदशोभावंत, प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो पव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलो उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, पूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड़ परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंग रसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इनस्यो प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे हुए कै मीठी, गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर उसके वड़े ठगाऊ, छोड़ै नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगसार।

वर्तन जाकै केवल नाम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जाकै एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जानै। कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली, ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्शो सफल जा की सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहलो दीजै गुणतास, आसा महला पंजवां। सगल सुख जप एकै नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साधका संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद होय आनंद पावै, जिस सिमरत मन होय प्रगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावै रहाओ। वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाकै हर हर नाम, प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकि पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गत में तो कथन ना जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ, मोहे गरीब को लेहोर लाए, नानक आए पै सरनाए, आसा महला पंजवा। आठ पहर उदकिस नानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़ै नाही, बहुर बहुर तिस लागै पाई, साल ग्राम हमारे।

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सभी ऊपर झूलै, ता का धूप सदा पर फुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गे राम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवां पंच पदा, जेह पेंड है लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवां दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवां महला पंजवां। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवां, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग,

की तप्त हरि पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहा हो। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगमे अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा आसा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचय मनमुख मूह राखा गुरु नानक बहा पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसर स्वामी इहा उहा कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सोजन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह बहु ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूटे नाही पली पांत सब सह सुमाही। जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साइय साचा सोई। सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपो पद पाई है सास सास सो गुणित गई है। दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा प्रथमे

गुरपुरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशे, सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अग्न बुझी सब

मानो बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे।

जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटया सब मैं लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहेब कै मन पावै। वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी शनी नाही बात गुर नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवा गुर पूरे राख्या दे हाथ प्रगट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण कहो नानक गुर कौ कुर्बान। आसा कर

जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा, माण निमाणे तू तनी तेरा परवासा बिन साचे।

ससगुर पूरा भेड़ सी सो चलै जाए। चतराई सियाण पां कितै कामना आई है, तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटै महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार ओह आदि जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां साई अलख अपार, पोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंध घणा मन तन अपने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौण। जैसे पास हरे आओ तैसा संसार सब, नानक बंधन काट मिलावो आप प्रभ। आसा महला पंजवा, हब्बे थोक विसार हिको ख्याल कर, झूठा लाहे गुमान मंत निरपतर। आठ पहर सा लाहे सृजनहार, तू जीवा तेरी दात कृपा करो मूं रहाओ। सोई कम कुमाए जित मुख उजला, सोई लगे सच जिस तू देहला। जो ना टहंदो मूल सो कर दास कर, हिको चित वसाए कदे ना जाए मर। तिन्ना प्यारा राम जो प्रभ पाणिया, गुर प्रसाद अकथ नानक बखाणिया। आसा महला पंजवा, जिन्ना ना विसरै नाम से कनेहा, भेद ना जानो मूल साई जेहा। मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से। जिसनो मन्ने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए। दिन सरैण आराध समाले साहसा, नानक की लोचा पूर सचे पातशाह। आसा महला पंजवा, पूर रया सर्व ठाए, हमारा खसम सोए। एक साहेब सर छत दूजा नाहे कोए, ज्यो पावे त्यों राख राखण हारिया। तुझ बिन अवर ना कोए, नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाले प्रभ आप कड़कड़ सारी है, जिस मन उठा आप तिस ना विसारी है। जो किश करे सो आप अपन भाणिया, भगतां का सहाई जुग जुग जाणिया। जप जप हर का नाम कदे ना झूरिया, नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है। आसा महला पंजवा, क्या सोवै नाम विसार, गाफल गह लिया। कीती इत दरियाए वंजन महिंदिया, बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगी है। आठ पहर गुण गाए साधु संगिया रहाओ। भोगे भोग अनेक विणना मैं सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मलना, बिन सिमरन तन शार सर पर चलना। महा बिखम संसार विरले पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवा, कोई न किसी ही संग काहे गर्बी है, एक नाम आधार पौजल दरबी है। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे रहाओ। राज माल जंजाल काज ना कितै गनो, हर कीर्तन आधार निहचल एहो तनो। जेते माया रंग तेत पछावया, सुख का नाम निदान गुरमुख गावया। सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे, आस भरोसा खसम का नानक के जी अरे। आसा महला पंजवा, जिस मृत दुख जाए सह सुख पाई है। रैन दिनस कर जोड़ हर हर त्याई है। नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए, सर्व रहया परपूर सच्चा सच सोए रहाओ।
अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान जोग तिसे अराध मना विनाशय सगल रोग। राखन हारे अपार राख अगन माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाए सुख सहज आनंद कणा नानक जन तूरा कार्ज सगले सिद्ध पए पेटिया गुरपुरा आसा महला पंजवां। गोविंद गुणी निदान गुरमुख जानी है होए कृपाल दयाल हर रंग माणी है आवो संत मिला हर कथा कहानियां अंदर सिमरो नाम तजलाज लुकानियां रहाओ। जप जप जीवा नाम होवे अनद कणा मिथ्या मोह संसार झूठा विणसना। चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया तन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवां। आवहो मीत एकत्र होए रस कस सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है मिल पापा मुंच है। तत विचारो संत जनो ताते बिघन ना लागे खीन पए सब तस्करा गुरमुख जन जागे रहाओ। बुद्ध गरीबी खर्च लै हो हम मैं बिख जा रो साचा हट पूरा।

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वणजारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निधाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हों चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कह उजली तिस दासी गनिये रहाओ। वे प्रवाहो आनंद में नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संता की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कहे सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिए एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिशायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तउ लो जौ मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए बिश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कौ लग है जिस जीत ना आवे,
तिस जम नेण न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगै पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाउ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर। कौन समसर लावो रहाओ, उठो बैसो रह पे ना सको। दर्शन खोज खोज आवो, ब्रह्मादिक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार। तिनको महल दुलभावो, अगमय अगमय अगाध बोध। कीमत परै ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की। सतगुर पुरख ते आवो, भयो कृपाल दयाल प्रभु ठाकर। काट्यो बंद गरावो, कहो नानक जो साध संग पावो। कहो नानक जो साध संग पायो, तौ फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवां, अंतर गावो बाहर गावो। गावो जाग सवारी, संग चलन कौ तोसा दीना। गोविंद नाम के ब्योहारी, अवर बिसारी बिसारी। नाम दान गुरपूरै दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विश्वास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभु पावो संतरेन और तारी। श्रवणी कथा नैन दर्स पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवां महला पंजवां। जिसनो तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री, सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करै है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उडाने। दिन दोए चार पोराहा, पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा। जैसे अंब कुंड कर राखियो, परत सिंध गल जाहा। आवगे आग्या पार ब्रह्म की, उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चालै लेखे बैसै, लेखे लैंदा साहा। सदा कीर्त कर नानक हर की, उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवां, अपुष्ट बाते पई सिजरी। दूत दुष्ट सजनई, अंधकार मैरतन प्रगासियो। मलीन बुद्ध हशनई, जौ कृपा गोबिंद पई। सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई रहाओ। मोहे कृपन को कोई ना जानत, सगल पवन प्रगटई। संग बैठनो कही ना पावत, हुन सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल त्रिसन बुझ गई। एक बोल पीखब तो नाही, साध संगत सीत लई। एक जीही गुण कमन मखाने, अगम अगम अगमई। दास दास दास को करियो, जन नानक हर शरण।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवां दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एह मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे।

जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भागै नाही मोहकम फौजा ठली रे, कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लाए की रे, बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मनते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सास संगानी रहाओ, पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी, चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी, राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल स्यान पा भज पार ब्रह्म निरंकार, एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बूझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ, महापौजल लंघिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारिए दुख ना जम पर होए, नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ, हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जनते आवे तरण कौ संसार, कर्म धर्म अनेक किरिया सब ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव, नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान, जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रवतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग, खाट लाभ गोबिंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग। हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याए सो प्रभ, त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप, त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार, चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा उद्दम करो करावो ठाकर, पेखत साधु संग हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। मन मैं राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय, होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का चाओ, दया करो किरम अपने को एह मनोरथ सुआओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश ना है, ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे।
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟੈ ਮੱਜਨ ਹਰ ਜਨ ਤੂਰ ਪਾਏ ਭਗਤ ਪਰਮ ਪਉ ਨਾਸੈ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਮੈ ਗੋਚਰ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸਮਸਤਕ ਭਾਗ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਮਲਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਦ ਹੋਤੇ ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤਾ ਸਭ ਮੈਰਿਆ ਸਮਾਏ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਵਾ ਸਭ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਏ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਭਣੀਐ ਕਲਯੁਗ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਹੇ ਅਹਿ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅਹਿ ਕਰ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਐ ਕਿਸੈ ਥਾਏ ਹਰ ਜਿਉ ਸੋਈ ਕਰੈ ਜੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਾਚੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇਹ ਹਰ ਦਰਸ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੇਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀ ਸੰਗਾਰੇ ਨਰਕ ਭਵੰਤੇ ਨਰਕ ਪੜੰਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕੋਲੇ ਉਦਾਰੇ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਨੈ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਵ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਵਰ ਸੋਏ ਰਹੇ ਰਹਾਓ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਬਿਖੈ ਰਸ ਮਾਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਹਿਨ ਗਹੇ ਮਿਥਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁਪਨ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਮਨ ਮੁਖ ਸਤ ਕਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ

मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवा, हरख सोग बैराग आनंदी, खेल री देखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु, खिनहु उठतायो, खिनहु रस भोगन खिनहु, खिनहु तजायो। खिनहु जोग ता बौ पूजा, खिनहु परमायो, खिनहु कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा, कर सतारवा, आसावरी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड़ नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरण पै री सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगी री सखी, आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तो मिलिया गुर कृपान में।

तौ चूकी सगल कान लैनो जिस मथान हा पै पाव को पार प्राण हा निज कर तिस थान हा हर रस रसै मान हा लाथी तिस पुखान हा नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीहा जपिय सह तुनिहा साधु रसन पनीहा शूटन बिद सुनिहा पाइये वडपुनी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनिहा सर्व का प्रभ तनिहा दुलभ कल दुनिहा दुख बिनासनी हा प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविय हां अलख अपेविय हां ता स्यो प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां गुरते जाने हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निधान लहो हां सुख समाइये मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ताको सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगतां शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लए मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूह हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां निमख ना विसरे हां तिस बिन क्यों सरे हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर न सुजे मूहा करे सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पातख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतरगत बुझे हां सबके सब के तिस सुजे हां पतत उधार ले हो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साज पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला सा साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले ते जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हो मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बनखंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लै घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हमें कौरा रहाओ। एहो मन मुग्द कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिलै काल कंटक मारे सच पेलै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीन्या हर प्रव्या पै। मन बैरागी हम मैं त्यागी कटकट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत रख है। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथा किए। गुरमुख राग स्वाद्यन त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास संदासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कही है बिन गुर राम नाम कतल है। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला जो पावे त्यों रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख विण गुर शब्द जन्म के लिख देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुरनर सह समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम समसर अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भक्त की संगत राम। बंधन तोरे सह त्यान छूटे गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग। आसा महला पहला एक तुगी गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान, हों मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन शब्दा अन विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंध ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़, महला अंदर होंदिया हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखे वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया, गरी शोहारे खांदियां, मन से जड़ियां, तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया, तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस पावै दे वड्याई, जे पावै दे सजाए, अगों दे जे चेती है, तां कायत मिलै सजाए, साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए, चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेतो, हुण कहन ना मिले खुदाए, एक घर आवे अपने, एक मिल मिल पुछे सुख, एक ना हो लिखिया बैबै रोवै दुख। जो तिस पावे सोथी है, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े, कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, ए कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवे भाई रहाओ। कहां सो घर दर मंड मैला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी विगुती, इन जर कणी खुवाई, पापा बाज होवै नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किन ना परचा लाया, मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी, एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी। आपे करे कराए करता, किसनो आख सुनाई है, दुख सुख तेरे पाना होवे, किसथे जाय रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा काफी महला पहला, कर अठवां अष्टपदिया। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ। नीत नीत कर बांदी है, जे रहना होई पिंड पवे जियो चल।

या सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए ऐथे कर कर जाप दे आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपै नाए ओ रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अतब मानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिलिया कंचन होए निर्मल ज्योतिया पार बिन गुर कोय नारंगी है गुर मिलिया रंग चढ़ाओ गुर कै पै पाए जोर ते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावणे झूठे ठाओ ना कोए जिसनो आपे रंगे सो रप सी सत्संगत में लाए पूरे गुर ते सत्संगत उपजै सहजे सच सुभाए बिन संगति सब ऐसे रह जैसे पस ढोर जिन कीते तिसै ना जाननी बिन नामै सब चोर एक गुण में हाजै अवगुण विकण है गुर कै सह सुभाए गुर सेवा ते ना पाया उठा अंदर आए।

साध तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तुद पावे सो भला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभेटे परमानंद। आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा संता की जात एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ समरिया प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख भी सरै प्यारे सो क्यों तजना जाए एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए। जो जन राते राम सिंह प्यारे अंत ना काहू जाए हर जिनी चाख्या प्यारे तृप्त रहे गाए अंचल गहया साध का नानक पैव सागर पार पराए जन्म मरण दुख कटिया प्यारे जा पेट हर राए सुंदर सुगड़ सुजान प्र मेरा जीवन दर्श दिखाए। जो जी तुझते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कह न जाए साची प्रीत ना टुटई प्यारे जो जुग रही समाए जो तुद पावे सो पला प्यारे तेरी अमर जाए नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सही सुभाए सब तुम ही जानते प्यारे किस पे कहो सुनाए।

दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। तदै तार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जन रंग किया, तिहदा दिया सब नी लिया, कर्मी कर्मी हुकुम पया। नन्ने नाहा भोग नित भोगे, ना डीठा ना संभलिया, गली हों सोहागण भैणे, कंतना कबहू मैं मिलिया। पप्पै पातशाहो परमेसर, वेखण काओ परपंच किया, देखै बूझै सबके जाणै, अंतर बाहर रव रहिया। फफै फाही सब जग फासा, जमकै संगल बंद लया, गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा टालन आप लगा। पब्बै पालै ऐसे फल पावै, गुर प्रसादी जन को पौ पया। मन मुख फिरै ना चेतै मुड़े, लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतव्या। काया पीतर यवरो पड़िया, मम्मा अखर विसरिया। यही है जन्म ना हो वी कदी, जेकर सच पछाण है। गुरमुख आखै गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। आरारै रव रहया सब अंतर, जेते किए जनता। जन तो पाए तंदै सब लाए, कर्म होवा तिन्ना मिलया। लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना समकर सहना, पाणै ताकै हुक्म पया। ववै वास दियो परमेश्वर, वेखण कहो जिन वेस किया, वेखै चाखै सबके जाणै, अंतर बाहर रव रहया। अड़ाड़ै राड़ करै क्या प्राणी, तुसै त्यावो जे अमर होवा, तिसै त्यावो सच समावो, ओ सिविटों कुर्बान किया। हा है होर ना कोई दाता, जियो